0: to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 years or older to game.
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
7: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी.
8: ये तारा वो तारा हर तारा.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao, kahani mein twist.
14: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
13: And pistachio lamb chops?
14: Full on flavor ka fusion.
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: जिंदगी एक रंगमंच है
17: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
3: Asia Radio.
19: डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? इट इज मी द वन एंड ओनली एपी द हैप्पी एंड वी आर बैक. कल ना मैंने एक नई फ्रेंड बनाई, उसने बोला कि एवरी टाइम आई से वी आर बैक ऑन द रेडियो शी गेट सो एक्साइटेड. तो भाई आप सबके लिए जो मेरी आवाज सुनने के लिए तरस जाते हैं और कहते हैं अरे Ibi, she is back. Yes, guys, we are back. And let's get the show on the road.

भाई दैट सॉन्ग वॉज फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज. एंड अगर आपको नहीं पता वो करण औजला का गाना है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द रियली अमेजिंग आर्टिस्ट टू कम आउट ऑफ कैनेडा. ही इज लाइक अ कनेडियन पंजाबी आर्टिस्ट एंड ही इज लाइक डूइंग रियली गुड वर्क. बाय द वे अगर आपको नहीं पता, वैसे तो वी आर नॉट अलाउड टू प्रमोट अदर शोज विच आर नॉट एसोसिएटेड विद फनेशा, बट आई कैन टेल यू दैट ही इज गोइंग टू बी इन डैलस ऑल्सो रियली रियली सून. He might be the next Diljit Dosanjh. That's all I can tell you. And in case you want to know more information, you can always Google. However, guys, भाई गाने सुनते सुनते कई बार आपको अपने सपनों के घर के याद नहीं आती कि हाय आई विश आई कुड बिल्ड दिस ब्यूटिफुल हाउस. मैं ना आई वर्क नॉर्मली इन हाईलैंड पार्क, यूनिवर्सिटी पार्क वाले एरिया में, एंड आई ड्राइव पास दीज ब्यूटिफुल मैसिव हाउसेज एंड आई एम लाइक वन डे आई शैल ओन अ हाउस हियर इन हाईलैंड पार्क और लाइक एटलीस्ट यूनिवर्सिटी पार्क और समवेयर इन प्रेस्टन हॉलो. दैट इज़ माई ड्रीम. ओके, तो इसीलिए अगर आपकी तरह, अगर मेरी तरह आपके भी ड्रीम होम के सपने हैं, देन यू नीड टू रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, बिकॉज सिंस 1998 उन्होंने फैमिलीज को हेल्प किया है टू फाइंड देयर परफेक्ट होम्स इधर बाय मॉर्गेज सोल्यूशंस, बाइंग और रीफाइनेंसिंग के लिए कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम, बिकॉज मे बी वो अपने सपनों का घर सच कर सकते हैं. ओके, तो गाइज आगे बढ़ते हुए लेट्स लिसन टू दिस वन सॉन्ग. यू मे नॉट हैव हर्ड इट बट दिस इज अमित त्रिवेदी फीचरिंग शर्मिष्ठा चैटर्जी.

एंड गाइस वी आर बैक। तो अब यार, अब तुमने बोल दिया, मैं वी आर बैक कितनी बार बोलती हूँ, अब मुझे बोलना अच्छा भी लगता है। आई लव दैट, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। तो गाइस आगे बढ़ते हुए, अगर यू आर ड्राइविंग दिस टाइम ऑन द रोड, बी केयरफुल। DFW के रोड्स वैसे भी थोड़े से अजीब से होते रहते हैं हमेशा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर्स आर देयर। हाउएवर, इफ यू एवर गेट स्टक इन एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड यू गेट हर्ट, ओके, or if you have tripped and fallen somewhere at an office or a grocery store or anywhere, then you need to call attorney Omar Khwaja and you pay nothing unless he actually wins. You focus on your healing while he will fight your case for you. Call 469-300-5046. Abhi recently one of my friends is a paralegal. Wo mujhe bata rahi thi, ek lady jo hai, she kind of basically walked into a glass door and dhad se unko lagi sar pe. और यू नो कई बार हमसे नहीं होता कि कांच इतना ज़्यादा चमक रहा है, बट शी सेड कि नहीं, वो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, मैंने तो देखा ही नहीं। तो इसी तरह के अगर केसेस हैं और अगर आपको चोट लगी एंड यू थिंक द ऑफिस इज एट फॉल्ट, देन यू नो लेट ओमर ख्वाजा फाइट योर केस फॉर यू, यू कैन मेक सम मनी फॉर ऑल यू नो।

0: गई चुल, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
1: तो गाइज ये नेक्स्ट गाना जाता है मिस्टर डीजे के लिए। उन्होंने बड़ा मेरे को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि प्लीज मेरे लिए वो वाला गाना बजा दो, खन खन खन। मैंने कहा भाई खन खन खन से तो बड़े सारे गाने होते हैं, कौन सा वाला खन खन खन, ये वाला। तो उन्होंने बोला हीरो नंबर वन, तो देन दिस वन इज फॉर यू मिस्टर डीजे। अब मुझे समझ में आ गया कि ये खन खन खन क्या है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो बैकग्राउंड सिंगर कहती है खन खन खन। आई सी, ओके। जिसको बोलते हैं लिसनर के कान, पूरे डिटेल में याद है, क्या बात है मिस्टर।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता
3: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
6: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
7: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
11: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
12: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
13: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
14: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
12: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
15: We need to talk.
16: अब क्या हुआ?
15: Nothing. It's not you.
16: Oh no.
15: It's the distance.
16: Distance? We live 10 minutes apart.
15: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
17: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
15: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 p.m. टू 7 p.m. फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
18: एंड वी आर बैक। तो भाई जाने से पहले जो डीजे वाले बाबू थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया ये छोटा सा गाना, हाउएवर कमर्शियल ब्रेक शुरू हो गया, वो तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन पता है मेरे कंट्रोल में क्या है? टू फिनिश द सॉन्ग। दिस वन गोज आउट टू यू सर।

तो गाइस वो गाना तो खत्म होता रहेगा, बहुत लंबा गाना है यार। पहले के जमाने में 90s में लोग इतने लंबे लंबे गाने बनाते थे। समटाइम्स आई फील लाइक सम ऑफ दीज सॉन्ग्स, लाइक इफ यू चेक आउट तम्मा तम्मा लोगे, देयर लाइक 7 मिनट सॉन्ग्स, मतलब क्वाइट लॉन्ग एंड रियली एक्सटेंडेड म्यूजिक सेक्शंस, रियली एक्सटेंडेड इंटरल्यूड सेक्शंस। कोई बात नहीं, वो आप बाद में अपने आप से सुन लेना। लेकिन गाइस आगे बढ़ते हुए, इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर tax solutions and you own some kind of a small business and you're looking for somebody to advise you on tax, accounting, payroll, bookkeeping, business advisory services for individuals and businesses, then you need to reach out to AG FinTax because they can help you with all of this information. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. Jaise hi aapko pata hai, 8 o'clock is going to be our giveaway time. तो अभी दिस इज बाय द वे, मैं बताना तो भूल ही गई, आज तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। फॉर पीपल हु आर जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे, दिस इज योर बेस्टी इपी द हिपी ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डैलस। डिगी डिश एग्जैक्टली गाइज। तो अगर आप पहली बार मेरा शो सुन रहे हैं देन यू प्रॉबली डोंट नो द फॉर्मेट ऑफ द शो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तालियां आपके लिए। और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 7 to 8 वी टेक सम रिक्वेस्ट एंड वी प्ले सम फन म्यूजिक अपबीट मोस्टली, एंड आफ्टर 8 o'clock वी हैव अ गिव अवे टाइम एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट आवर स्कोप। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड वट इज द थिंग according to neuroscience that makes relationship last forever. Okay, have you seen like those really old buddha buddhi couples and they're like so in love? Mere actually fun fact pata kya hai, mere ghar mein na abhi thoda sa kaam chal raha hai, to mere jo landlord hai, meri jo landlady hai, they are like this really old couple in their like late 70s and the lady is like, oh baby, please baby, and you know she talks to her husband like that. It is literally the most adorable thing and they are always looking out for each other. Chup chap baith ke wo mere ghar pe hi deda dal ke baithe hue the while my bathroom was getting renovated, and well, I'm the tenant but I couldn't kick them out because it's technically their apartment, but let's not get there. तो गाइज आगे बढ़ते हैं, आई एम गोना प्ले यू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, दिस इज फ्रॉम कॉकटेल 2, ऑल्सो गोज आउट टू डीजे वाले बाबू, आपका गाना बजा दिया मैंने।

तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, सोनू निगम इज कमिंग. एग्जैक्टली, ही इज कमिंग टू डैलस एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. आई सॉ सम क्लिप्स फ्रॉम सम ऑफ हिज कॉन्सर्ट वीडियोज विच ही हैड डन इन शिकागो एंड अदर प्लेसेस जस्ट रिसेंटली, बिकॉज ही इज आउट ऑन टूर, आपको पता है ना. एंड व्हेन इज द कॉन्सर्ट? इज गोइंग टू बी ऑन सेप्टेम्बर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. Your favorite song, that iconic voice, everything is live. Tickets are on sale at Ticketmaster. For more information, call 855-360-SHOWS. And of course, Funasia is the exclusive media partner for this event. तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, आई वुड रेकमेंड गो चेक आउट द वीडियोस. देर आर स्टिल सम टिकट्स अवेलेबल. इट्स गोइंग टू बी मैसिव, बिकॉज ही आई सॉ दिस वीडियो वेयर ही वाज लाइक नॉट ओनली सिंगिंग इन हिज ओन वॉइस लाइक अ गाइज वॉइस लाइक दिस, बट ही ऑल्सो सेंग इन लाइक दिस हाई पिच वॉइस टू सिंग द गर्ल पार्ट, एंड इट वॉज सो कूल लाइक ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू गो चेक इट आउट. एंड दिस सॉन्ग is of course a Sonu Nigam song, but also it was a request by Mr. Sanjay. So Sanjay ji, ye gana aapke liye.

आगे बढ़ते हुए, वेल वी आर गोइंग टू चेंज द मूड अ लिटिल बिट हियर. वन ऑफ आवर लिसनर्स शफी हैज रिक्वेस्टेड कि भाई कोई कवाली बजाया जाए यार, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से कवालियां बजा रहे थे एंड एवरीथिंग. सो दिस वन, यू नो व्हाट, व्हाई नॉट. मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने नुसरत जी की कवाली बजाई थी. आज मैं आपको वेरी पॉपुलर एक कवाली ट्यून है, दम मस्त कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर. आप सबको पता है, मतलब आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट. लेकिन उसके ना इतने हजारों वर्जन्स हैं, कौन सा वर्जन बजाऊँ, सारी वर्जन अच्छा है और सब अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं. मैं आपको प्ले करने वाली हूँ. दिस इज ऑफ कोर्स बाय द वन एंड ओनली ज्योति नूरान. अगर आपको नूरान सिस्टर्स के बारे में नहीं पता, दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलर. देयर लाइक अ ग्रुप ऑफ पंजाबी सिस्टर्स एंड दे सिंग अमेजिंग अमेजिंग कवाली. लाइक ओ माय गॉश, एक तो फीमेल कवाल सिंगर्स वैसे ही कम होती हैं मतलब दुनिया में, उनमें से भी शी हैज सच ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉइस. आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू हर. So I hope you enjoy this version.

मातम मस्त कलंदर, हक्त मातम मस्त कलंदर, हक्त मातम मस्त कलंदर, हक्त मातम मस्त कलंदर, हक्त मातम मस्त कलंदर, हक्त।

जो गाना आप सुन रहे हैं दैट इज इन द आवाज ऑफ फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद, टू एब्सोल्युटली सेंसेशनल पाकिस्तानी कवाली सिंगर्स. दिस इज फ्रॉम देयर कोक स्टूडियो वर्जन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: होचो
8: होको
7: होचो
8: होको
7: होचो
8: इट्स होको।
9: अरे बस भी करो यार।
8: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
9: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है,
5: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Documents या parcel भेजनी है?
13: हाँ।
12: घर relocate करनी है?
13: हाँ।
12: गाड़ी भी transport करना है?
13: हाँ भाई हाँ।
12: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
14: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज़ फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। फिएस्टा वेजी, पोयो लोको, सनो कैमरॉन, डिफरेंट नेम्स, क्रेजी फ्लेवर्स। वंस यू try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं हीरो।
20: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: भाई हम भी, हम और तुम फनेशा के लिसनर्स भी एक दूसरे में गुम हो गए और एक हो गए यार, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर एन इवनिंग इन डैलस एंड यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ओनली ऑन फनेशा रेडियो. क्या लाइन मारी यार, हम में तुम में हम गुम हो गए और एक हो गए. वाह, क्या आइकॉनिक तरीके से वो गाया था यार. तो अगर आपको नहीं पता वो कौन है, वो है एब्सोल्युटली द इनक्रेडिबल, द मोस्ट अमेजिंग फरीद अयाज और अबू मोहम्मद. आई बिकेम अ फैन ऑफ देयर्स मेनी मेनी ईयर्स अगो, कुछ 15-20 साल पहले, एंड अराउंड अराउंड द सेम टाइम आई थिंक, कुछ 15 साल पहले आई हैड द प्रिवलेज ऑफ वॉचिंग दैम लाइव इन डेली. आई यूज टू वर्क फॉर दिस डांसर एंड शी यूज टू डांस टू लाइक लाइव कवाली म्यूजिक. तो वो ना कवाल्स को दूसरे अलग अलग दरगाह से लेकर आती थी, एंड शी स्पेशली फ्लू डाउन फरीद अयाज जी एंड अबू मोहम्मद जी फ्रॉम पाकिस्तान ऑल द वे टू दिल्ली, एंड उन्होंने उनके साथ कॉन्सर्ट किया इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और वो बड़ा अच्छा हुआ था. मतलब वाओ, व्हाट अ महफिल इट वाज. ओके, तो आगे बढ़ते हुए गाइज, जैसे आपको पता है इट इज 8:05, 8:06 टू बी प्रिसाइज. 8:06 को क्या होता है, हमारा गिव अवे राउंड. टुडेज गिव अवे इज फ्रॉम द फन पिज्जा किचन. दे हैव न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज. वेदर यू आर ट्राइंग फिएस्टा वेजी, फायरी पोयो लोको, या फिर सी फूड पैक्ड सीनियर कमारोन एंड सो मेनी मोर फ्लेवर्स. तो अगर आप आज का क्वेश्चन आंसर करते हैं देन यू गेट ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. ठीक है, तो द गेम इज़ वेरी सिंपल. मैं आपको अपनी तरीके से एक बॉलीवुड स्टोरी नरेट करके सुनाऊंगी, एक्सक्यूज मी, आपको उसका मूवी का नाम गेस करना है, एंड दैट्स इट, इट्स सो इजी. अगर जो पहले कॉलर होंगे और जिन्होंने पहला, मतलब जिनका कॉल पहले कनेक्ट होता है, प्राइज़ उन्हीं को मिलेगा. ऑफ कोर्स मेरे पास सिर्फ एक ही विनर की जगह है आज. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टू विनर्स, आई ओनली हैव वन विनर फॉर टुडे. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज की स्टोरी शुरू होती है दो ऐसे लफंगे टाइप के लड़कों से. दोनों अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में रहते हैं. एक दोनों मतलब दे आर वेरी सिंपल, नॉट नॉट लाइक मिडिल क्लास बॉयज, एंड उनके सपने ये थे. वो बड़े लाइक, वैसे तो कैरेक्टर वाइज बड़े आलसी टाइप के दो लड़के हैं. उनको कुछ काम नहीं करना, एक को हीरो बनना है, दूसरे को कुछ और करना है. बेसिकली दे वॉन्ट टू फाइंड ए रिच गर्ल जिससे वो ना अपना मील टिकट ढूंढ सके, एंड बेसिकली दे कैन मूच ऑफ ऑफ दिस रिच गर्ल. एंड हमारे कॉलर नहीं आई, ऑलमोस्ट आ गई, एक्चुअली आ गई हमारे पास कॉल. लेट्स गो सी इफ दे गेट द राइट आंसर, जबकि मैंने पूरी स्टोरी भी नहीं बोली. हाय, कैन यू हियर मी?
1: Yes, I can hear
0: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर
1: you.
0: नेम एंड देन टेल मी इफ यू नो द करेक्ट आंसर.
1: So my name is Setu and correct answer is अंदाज अपना अपना.
0: अरे वाह, क्या बात है यार, मैंने तो पूरा रवीना और करिश्मा की स्टोरी भी नहीं बोली और सबने गेस कर दिया अंदाज अपना अपना. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड गाइज, वी हैव अ विनर, सेतु हैज वन द गिव अवे. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सेतु. मेरी तालियां कहाँ गई, रुको मैं तालियां बजाती हूँ आपके लिए. ये रही. तो सेतु आप लाइन पे बने रहिए, मैं एक गाना बजाती हूँ, देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन देन. ठीक है,
1: ओके, या थैंक
0: ओके
1: यू.
0: गाइज, आप ये गाना एंजॉय करिए, होपफुली आपकी भी लाइफ इन दो लफंगों की तरह लिफ्ट हो जाए ऊपर, एंड मे बी यू कैन ऑल्सो फाइंड अ रवीना और अ करिश्मा.

रिसर्च एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ. अगर आपने नहीं सुना है देन गाइज आई एम सॉरी, यू हैव टू लिसन टू माई शो मोर रेगुलरली सो यू कैन कीप अप. और अगर आपने सुना है तो वेरी गुड, थैंक्स फॉर लिसनिंग. तो गाइज आज हम अपना कंक्लूड करते हैं ये पूरा ब्रेन और न्यूरो साइंस वाला चैप्टर. टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट बेसिकली व्हाट मेक्स रिलेशनशिप्स लास्ट. ओके, जैसे हमने पूरे पिछले 2 हफ्ते से वी वर कवरिंग अट्रैक्शन, वी कवर्ड फॉलिंग इन लव, बॉन्डिंग, यू नो व्हाट मेक्स पीपल बॉन्ड, हार्ट ब्रेक. एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड द क्वेश्चन विच आई थिंक एवरीबडी काइंड ऑफ सीक्रेटली वॉन्ट्स टू नो, विच इज कैन दैट इंटेंस गिडी डोपामीन फ्यूल्ड फीलिंग फ्रॉम दी अर्ली डेज फ्रॉम योर हनीमून पीरियड, कैन इट एक्चुअली लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, आई मीन यू नो और लाइफ टाइम वट एवर, और इज इट इनएविटेबल दैट रोमांस फेड्स इन टू समथिंग मोर क्वाइट लाइक जस्ट जस्ट अ कंपेनियनशिप, जस्ट रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप. मुझे बहुत सारी कल कॉल्स आई, कल तो नहीं मतलब ओवर दीज लास्ट फ्यू डेज वी वर सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, बहुत सारी कॉल्स आई. कई लोग कहते हैं नहीं वो अट्रैक्शन सब फेड हो जाता है, एवरीथिंग इज जस्ट यू नो फिजिकल केमिस्ट्री बाय द एंड ऑफ इट. जब फिजिकल केमिस्ट्री चली आती है लोगों की, जब सेक्सुअल केमिस्ट्री चली आती है, देन इट इज जस्ट यू नो जस्ट लाइक फ्रेंडशिप और समथिंग, यू हैव टू कीप री इन्वेंटिंग. आई वॉज लाइक गाइज देर इज समथिंग मोर देन जस्ट टू पीपल गेटिंग क्लोज टुगेदर देन जस्ट गेटिंग फिजिकली इंटीमेट, देर इज सो मच मोर टू दैट. एंड हियर इज अ गुड न्यूज, न्यूरो साइंस ऑल्सो हैज दैट आंसर फॉर यू. इट इज मोर होपफुल देन वॉट यू एंड आई बोथ थिंक. और कैसे वो ज़्यादा होपफुल है, लेट्स स्टार्ट विद अ सॉन्ग, उसके बाद हम आके इसके बारे में और बातें करेंगे, ठीक है. सिंस वी वर गोइंग ऑन दिस लाइक 90s प्ले लिस्ट एंड आई गॉट सम नाइस फीडबैक कि भाई आप 90s के गाने बजा रहे हो, बहुत लोग नहीं बजाते भाई. जस्ट फॉर यू गाइज 90s के गाने कमिंग अप.

0: तो गाइज हम फॉर अ लॉन्ग टाइम पता है क्या था, देयर वाज दिस अजम्पशन इन साइकोलॉजी कि पैशनेट लव जो है, जो इंटेंस वाली जो केमिस्ट्री होती है, मतलब आंखों ही आंखों में इशारा हो गया टाइप्स, विच इवेंचुअली वुड फेड इनटू समथिंग व्हाट रिसर्चर्स वुड कॉल अ कंपैशनेट लव. तो मतलब वैसी इंटेंस वाली केमिस्ट्री नहीं रहती बहुत सालों बाद, देन यू जस्ट स्टार्ट बिकमिंग लाइक रियली रियली गुड फ्रेंड्स. काफ़ी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप्स में एक फेज के बाद रिलेशनशिप की मीनिंग चेंज हो जाती है, यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स एंड समथिंग. लेकिन बहुत सारे कपल्स इंक्लूडिंग रियल पीपल, एंड दीज आर रियल पीपल कपल्स बाय द वे, दे फाउंड दैट ऑन एन एवरेज जो जिनकी रिलेशनशिप 20 ईयर्स से ज़्यादा लास्ट होती है, सम कपल्स अमंग दोज स्टिल कंटिन्यू टू बी इन दैट हनीमून फेज इवन आफ्टर 22 ईयर्स. और उन्होंने इनके लिए ब्रेन स्कैंस किए एंड ऑल ऑफ दैट. तो वॉट इज इट दैट एक्चुअली मेड द डिफरेंस? हियर्स द बिग डिफरेंस. ओके, अनलाइक द न्यूली लव ब्रेन्स, फ्रॉम डे टू दीज लॉन्ग टर्म पैशनेट कपल्स डिड नॉट शो एंग्जाइटी लेवल्स. नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी नए प्यार से मिलते हो, एंड देर इज लाइक, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आई मीन वी डिस्कस अबाउट दिस अलॉट राइट, जैसे हमने पहले भी बोला था, समटाइम्स आर ब्रेन टेंड्स टू कन्फ्यूज एंग्जाइटी विथ केमिस्ट्री. सो अगर आप किसी से मिलते हो एंड यू गेट ऑल दीज बटरफ्लाइज एंड एवरी थिंग, इट इज़ ऑफन सेड दैट कि ये बटरफ्लाइज जो है ये आपका प्यार नहीं है, दिस इज बेसिकली लाइक एंग्जाइटी बिकॉज इट फील्स लाइक एन अनसेफ जोन. तो दे द लॉन्ग टर्म कपल्स हु हैड द सेम पैशन वाला जो लव वाला फैक्टर है, दे डिड नॉट शो दिस बटरफ्लाइज, दे डिड नॉट शो दिस वाइल्ड एंग्जाइटी. ओके, दे डिड नॉट शो लो सेरेटोनिन, ऑब्सेसिव थिंकिंग पैटर्न, लाइक यू गेट ऑब्सेस्ड ओवर अ पर्सन एंड कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट, कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट. इंस्टेड देयर ब्रेन स्कैन्स एक्चुअली शोड एडिशनल एक्टिवेशन इन सर्टन रीजन्स ऑफ द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विथ अटैचमेंट, एंड इट इज लिंक टू एरियाज लाइक काम, पेन मॉड्यूलेशन एंड इन सम एनालिसिस बॉन्डिंग हॉर्मोन्स, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन अलॉन्ग साइड द डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम. इंस्टेड ऑफ बींग ओवरटेकन बाय लाइक दिस क्रेविंग वाली चीज, जो अडिक्शन वाली फीलिंग आती है वो वाली की जगह, दे हैड लाइक दिस कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑल दीज अदर थिंग्स विच इज काम फीलिंग, पेन मॉड्यूलेशन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एंड नन ऑफ दीज अप एंड डाउन वाली फीलिंग्स. इट्स वेरी बैलेंस्ड सस्टेन्ड फीलिंग, चले आ रही चले आ रही चले आ रही, एक वो धीरे स्लो ट्रेन की तरह, यू नो, चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, यू नो, वो चली जा रही है ट्रेन, अपनी डेस्टिनेशन पर जब जानी होगी पहुँच जाएगी. तो और क्या है इसके बारे में, वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट लिटल सॉन्ग.
1: जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं.

0: तो गाइज इट इज 8:29 ऑन द क्लॉक. हम अभी 10 सेकंड में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप बने रहिए यहाँ पे लाइन पे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ मोर फन थिंग्स टू डू राइट आफ्टर दिस ब्रेक.
1: अजी सुनते हो?
2: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
3: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट सिग्नेचर क्विजिन .net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
2: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
3: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive Media Partner, Panacea.
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
7: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
8: साथिया। कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है।

गाइज, अगर आपकी भूख भी आपके प्यार की तरह गहरा हो गया हो तो देन यू शुड गो एंड ट्राई होको. इंडियाज मोस्ट लव फूड ब्रांड्स इज नाउ इन फ्रिस्को, टेक्सस. दे हैव द वेरी वेरी फेमस चना पूरी सैंडविचेस टू डिलिशियस करीज एंड लेजेंडरी होको कोल्ड कोको. एंड ये सब है यहाँ पे. दे हैव अ 20% स्टूडेंट डिस्काउंट. तो माई स्टूडेंट्स हुआ स्टडिंग एट UTD एंड आसपास के जितने भी बच्चे हैं, और या फिर अगर आप हाई स्कूल में हैं देन यू कैन गो देयर विद ए वैलिड स्टूडेंट आईडी. एंड देयर इज ऑल्सो 20% डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉयज ऑन लंच पैक्स अवेलेबल थ्रू मंडे एंड फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अगर आप लंच पैक लेते हैं तो पूरा 20% डिस्काउंट आपको भी मिलेगा. विजिट होको एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को एंड लर्न मोर एट hoco.us. एंड आज का अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको एक फ्री प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट भी मिलेगी. भाई आज हमारे पास दो दो गिव अवे, ये तो सरप्राइज हो गया यार. तो क्वेश्चन ये है कि आई टेल यू व्हाट क्वेश्चन ये है. मैं गाना बजा रही हूँ, इसमें एक जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिस पे ये गाना पिक्चराइज किया गया है, आप उस एक्ट्रेस का नाम बताइए. विल गिव इट सिंपल, ओके? इट्स वेरी इजी. आई एम गोना प्ले यू अ सॉन्ग. इस पे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उसका नाम बताइए. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी.

0: have our first caller. Let's answer that call. Hi, can you hear me?
1: Yes.
0: Yes, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द नेम ऑफ द एक्ट्रेस.
1: माय नेम इज संजय. आई थिंक द एक्ट्रेस इज सोनाली बेंद्रे एंड
0: संजय की
1: आई
0: कॉल
1: एम
0: सबसे
1: जस्ट
0: पहले
1: लिसनिंग,
0: कनेक्ट
1: सो आई
0: होती
1: थॉट टू कॉल.
0: है. कोई बात नहीं, आप इसमें हमारे पास रूल नहीं है कि दूसरे वाले आप नहीं जीत सकते हैं, तो व्हाई नॉट एंजॉय द गिव अवे एंड गाइस एंजॉय द सॉन्ग. संजय बी ऑन द लाइन. ओके.

भाई तेरे प्यार में कई बार दिल इतना टूट जाता है कि ध्यान रखने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं लोगों के पास कई बार. हमने बात करी थी, दिल टूटना इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग फिजिकल पेन, है ना? बिल्कुल, वी टॉक्ड अबाउट इट. एंड व्हेन यू हैव फिजिकल पेन, व्हाट डू यू नीड टू गो व्हाट डू यू नीड टू डू यू नीड टू गो टू द डॉक्टर. लेकिन व्हाट इफ यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस? हाउ आर यू गोइंग टू अफोर्ड इट इन दिस क्लाइमेट? वेल देन कॉल अ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. ओके, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे हैव अ प्लान फॉर $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिटेशन, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेले हेल्थ एंड मोर. कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशंस डॉट कॉम. आई हैव टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस. देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस एंड द फ्रिस्को लोकेशन इज ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू, सो मेक श्योर यू गो चेक इट आउट. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए, ऑफ कोर्स इट इज 8:54 ऑन द क्लॉक, वी आर अबाउट टू गो इन टू अ ब्रेक रियली रियली सून. लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा गाना स्टार्ट करके देन वी विल कम बैक एंड आफ्टर 9 o'clock वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
6: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
7: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
6: And pistachio lamb chops?
7: Full on flavor ka fusion.
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: We need to talk.
13: अब क्या हुआ?
12: Nothing, it's not you.
13: Oh no.
12: It's the distance.
13: Distance? We live 10 minutes apart.
12: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
4: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
14: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: तो गाइज, हम ब्रेक में जाने से पहले, बिफोर अ लॉट ऑफ दिस, वी वर टॉकिंग अबाउट द रियल रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स लास्ट. ठीक है, सो हमने जैसे बोला, द रिलेशनशिप्स दैट डू लास्ट, दे डोंट शो दिस फ्रेंटिक क्रेविंग, दैट डोपामिन रश. दे शो थिंग्स लाइक ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन, काम फीलिंग्स, पेन मॉड्यूलेशन, इस तरह के. इट्स नॉट लाइक अ रश, इट्स नॉट लाइक अ क्रेजी प्यार वाला थिंग. तो this is one of the most hopeful findings in this whole field. Is it real? Is it possible? Now, सवाल ये है, is it possible to sustain real passionate love, long-term love, but the healthiest version of it looks very different, okay, from the new relationship intensity. क्योंकि new relationship intensity तो सबकी होती है, but is it possible to sustain this kind of love and kind of change the relationship dynamic? Now, it is possible, well, according to these two scientists. It combines the reward and the excitement of passionate love with the feelings of security, calm, trust, and deep attachment rather than obsessive, anxious, obsessive edge that characterizes early stage romantic love. Which जो हमने Tuesday तो नहीं, I think Tuesday को ही discuss किया था, which naturally tends to fade away. मतलब जो मैडनेस वाला जो प्यार है ना, वो थोड़ा सा फेड हो जाता है 12-18 मंथ्स के बाद. तो उसको चेंज कर सकते हैं हम इनटू अ मोर काम सेंस, मोर ट्रस्टवर्थी सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. तो गाइज, अगर वैसे ही अगर आप उसी तरह से इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रस्ट समथिंग एंड यू नो इफ यू डोंट ट्रस्ट योर एनर्जी सोल्यूशंस एनी मोर, देन यू नीड टू रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशंस. मे बी यू विल ट्रस्ट देम बेटर. भाई तारा कमर्शियल एनर्जी, दे प्रोवाइड एनर्जी सोल्यूशंस फॉर ऑल द स्मॉल बिजनेस ओनर्स और बिजनेस ओनर्स इन द DFW एरिया. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस जस्ट लाइक योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पार्टनर एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 8444-228-2808 और विजिट tara energy.com.

0: लिंकिंग रोड।
1: आपने ये वाला गाने का वीडियो देखा है? इट लुक्स सो फन। रवीना टंडन और सलमान खान, एंड सलमान खान यंगर वर्जन, मतलब पूरे बॉम्बे में रोलर ब्लेड्स करते करते, स्केटिंग करते करते पूरे अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं। मतलब इट लुक्स सो फन। और उस टाइम पे ना 80s में आई थिंक रोलर रिंग्स भी हुआ करती थी, अब जो यहाँ पे भी नहीं है, US में भी नहीं है, इंडिया में तो खैर है ही नहीं, बट इट लुक्स सो फन। मैं हमेशा देखती थी बचपन में ना, आई यूज टू वॉच ऑल दीज किड्स यू नो डू स्केटिंग सो एफर्टलेसली, मतलब हर जगह जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे चिपक के जा रहे हैं। आपने वो वाली देखी मूवी, एक हॉलीवुड भी मूवी आई थी बैक टू द फ्यूचर, उसमें मार्टी मैकफ्लाई, ही इज़ बेसिकली डिफीटिंग ऑल द बैड गाइज ऑन हिज रोलर ब्लेड्स। दैट वॉज सो आइकॉनिक। कभी मेरे दोबारा मुझे टाइम कभी मिलेगा ना कभी, so then I would love to learn how to skate. I mean, it looks so fun. Also, have you ever thought that Salman Khan in his younger age versus the Salman Khan that is now is a completely different identity? He was so joyful, athletic, so agile. Matlab, he was just a different, a very happy kid. Like, you can tell that It's not just, मतलब और अभी थोड़ी एज हो गई है, आई अंडरस्टैंड एज में लोग का उतना स्पंक नहीं रहता है, यू नो यू आर जस्ट काइंड ऑफ अ लिटल मोर सीरियस, बट ऑल्सो पीपल्स कोर पर्सनैलिटीज डोंट चेंज। ही इज़ बिकम लाइक दिस, आई डोंट नो, जस्ट लाइक दिस एक्स्ट्रा सीरियस एंग्री मैन वाइब्स, यू नो, लाइक दबंग वाली वाइब्स जो है, जो प्लेफुल वाली उनकी जो नेचर थी वेन ही वॉज यंगर इस वाली मूवी में, या फिर अंदाज अपना अपना में, या फिर और भी अर्ली 90s की मूवीज में, इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो एनीवेज गाइस, आगे बढ़ते हुए लेट्स प्ले अ सॉन्ग। लेकिन सॉन्ग बजाने से पहले, अगर आप अपने इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू होस्ट एनी काइंड ऑफ इवेंट, वेदर इट्स अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग, स्पेशल सेलिब्रेशन, वैनेसा इवेंट्स इज गोना हेल्प यू प्लान इट ऑल टुगेदर, बिकॉज यू नो समटाइम्स when it comes to planning events, all you want to do is just be the main highlight of the show. You don't want to be running around on your special day coordinating with the caterers and the vendors, so let somebody else handle that for you. They have venues, decor by Signature Events, photography, hospitality, catering exclusively by Basera Grand. Called Hari Basera at 469-442-8770. Yes, they are all related to Vanessa Events. Vanessa Events, they'll be your celebration partner. Make your life so much more simpler.

भाई गाइस, रिलेशनशिप तो अटक जाती है लेकिन आपकी करियर अटकने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि योर करियर इज स्टक और इफ यू आर वंडरिंग इफ एआई इज गोना टेक ओवर योर जॉब एंड लीव यू बिहाइंड, देन डोंट वरी. कॉन्टैक्ट प्ले इट फुल. देर आर फोर ज्वाइन द फोर टाइम टेरेक्स स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुल श्रेष्ठ फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. लर्न हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप प्रेजेंस एंड एक्सेलरेट योर करियर विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. दिस इज हैपनिंग इन डैलस ऑन सेप्टेंबर 19. रजिस्टर नाउ एट प्ले इट फुल .com/डैलस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी.

Guys, it is 9:43 on the clock. This is still Ippy the Hippie, only on Fun Asia Radio 104.9 FM, and you're listening to my show, An Evening in Dallas. So, guys, हम बात कर रहे थे what actually makes a relationship last. मैं कितनी बार बोल के उसको मतलब I have to move on. लेकिन I'm gonna try and summarize this before I log off for today. Okay, there are basically five main things according to brain scientists or neuroscientists that analyze why certain relationships last longer, मतलब प्यार भरे हुए relationships, not just for the sake of making it last, कि नहीं ठीक है हमारे ज़माने में हम divorce नहीं करते तो we will make it last, वैसा कोई social obligation नहीं है, but what actually make long-term प्यार भरे relationship lasts. First of all, novelty. Novelty मतलब couples who did one challenging activity together, something exciting in their life that keeps the spark alive. That could be anything. You can go to, you know, you like, it's like a challenge. Aap ek saath kuch build kar rahe ho, kuch bana rahe ho, okay? For, like rather than mundane activity. For example, long-term couples who try new things together, jaise travel, ya phir maybe they are learning a new hobby together. Maybe both of them join salsa dancing or learn how to play the piano or learn how to form a band together or play music together. Something like that keeps them keeps the relationship satisfaction higher. So that can actually be because you can support each other through that. Some exciting activity, okay? Second thing, touch, physical touch. And that is not just during the time of jhagda and all of that. Jhagda, ladai waqt ke time pe agar aap kiss and makeup karte ho, you hug, that's a different thing. But that regular physical affection increases bonding between two people, okay? Just a small hand on the back. जस्ट एक पीठ पे थपथपाना या फिर एक छोटी सी 5 सेकेंड की झप्पी या फिर समथिंग स्मॉल, ओके, जस्ट अ स्मॉल थिंग, नॉट अ ग्रैंड जेस्चर, ओके, नॉट लाइक हनीमून पीरियड वाला फिजिकल अफेक्शन, इट्स जस्ट लाइक अ लिटल स्मॉल जेस्चर, मे बी होल्डिंग हैंड्स, यू नो, यू आर टेकिंग अ वॉक इन द पार्क एंड यू आर होल्डिंग हैंड्स, जस्ट अ टाइनी लिटल थिंग, ओके. थर्ड, रिस्पॉन्सिवनेस. इसका मतलब क्या है? Found that partners who respond to each other warmly, then they, you know, for each other's day, for like small bits of attention and connection. So, ek dusre ko respond karna, aap ek dusre ko compliment de rahe ho, pure din mein ek aat bari, you know, you're reminding each other how much you are effective, how much you are affectionate towards them. Consistent responsiveness reinforces the reward system, okay, through positive reinforcement and attachment system that builds safety and trust, okay. Fourth, okay, learning how to manage conflict, resolve conflict without triggering chronic threat responses. Iska matlab kya hai? अगर आपके बीच में झगड़ा होता है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग योर पूरा खानदान इनटू दिस, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही थी, मुझे पता है तुम्हारे घर वाले सारे ऐसे ही हैं, और या फिर मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के चले आओगे, तुमने पहले भी ये किया, यू नो, दीज आर लाइक थ्रेट रिस्पॉन्सेज, राइट? तुम हमेशा इस बात को मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ऑल द नैगिंग वैगिंग, ये सारे झगड़े हमने बहुत सुने हुए हैं, लाइक 30 years ऑफ माई मैरिज, ऑल आई हैव हर्ड इज दिस दिस दिस, सो लर्निंग टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट विदाउट ट्रिगरिंग दीज काइंड ऑफ रैंडम थिंग्स, सेइंग दैट ओ ओके सो वॉट इज बॉदरिंग यू, देन द वाइफ सेज वॉट्स बॉदरिंग मी इज दैट यू डू दिस. And then this person says, well, I don't intentionally try and do it. And I understand that you're trying and saying that. Main koshish karunga apni tarike se puri usko resolve karne ke liye. And the wife is like, oh, okay, I feel heard now. That is conflict resolution. When you're responding to each other and communicating instead of just blaming each other. That is learning how to manage conflict. And finally, fifth point jo hai, which is the most encouraging, and this is trainable. They have the researchers have basically found out that novelty seeking, physical affection, responsiveness, all these, they are not just traits that everybody is born with. So you have to train yourself, train your partner,
ट्रेन, यू नो, दीज आर थिंग्स दैट विच हैव टू बी लर्न. हम कोई अपनी, यू नो, मदर के वूम से पैदा नहीं होते बाय लर्निंग ऑल दीज थिंग्स. यू दीज आर थिंग्स विच आर सपोज टू बी लर्न, यू हैव टू अडेप्ट देम. सो पीपल हु आर मोर रिसेप्टिव टूवर्ड्स चेंजिंग देयर बिहेवियर एंड अडेप्टिंग इट, उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन होती है. आपको क्या लगता है? डू यू थिंक देयर इज एनी ट्रूथ टू एनी ऑफ दीज 5 पॉइंट्स? है तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं. आई एम हियर फॉर मे बी 5 मोर मिनट्स. ओके, अंटिल देन यू एंजॉय दिस सॉन्ग.

गाइज मेरे जाने का वक्त आ गया है. आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे. नाउ आई होप यू हैव ए वंडरफुल वीकेंड. और वीकेंड से मुझे याद आया कि फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को हैज़ ए वीकेंड लंच बफे. तो अगर आपने अपने वीकेंड प्लान्स नहीं बनाए हैं देन दिस इज़ द राइट टाइम. मैं जाने से पहले आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट. दे हैव द लाइव बफे थिंग्स ऑन सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 12 PM टू 3 PM फॉर जस्ट $24.99 पर पर्सन, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग फॉर द अमाउंट ऑफ फूड दैट यू गेट. एंड देयर इज ए लॉट ऑफ डिशेज, लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड एवरीथिंग. सो डेफिनेटली गो चेक आउट द फ्लेवर लाउंज दिस वीकेंड. दे आर लोकेटेड ऑन 5855 प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. आई होप यू हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीक एंड आई विल सी यू ऑन मंडे. बाय.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
4: Sathiya कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
7: तुमसे मिलके दिल का है
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

0: याद दू।
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
4: Hi this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio

कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है देवाफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हमरा सता कश्ती तेरी

0: अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया। अरे घूट में सोया गया।
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: जेल से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: ए बद्राव, वाट लागले रे पोराचे।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

नित्य की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: जली है, बुझ गए दिए।
1: सुबह और शाम हर पहर आपके नाम, फनेशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फन एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
7: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकलाएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Ninja Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
4: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: बादशाह के लिए तब किया ना महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और खड़िया रह गया।
1: जय साहब।
2: जय हिंद।
0: सात किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।

0: इधर अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसके लिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले इतने जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: आपने
2: गलत बात है,
0: शाम को मिलता हूँ।
3: मेहरबानी करके कुछ

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. He's wrong. Watch me.

0: समझ है?
1: बढ़िया।
2: So beautiful.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: This is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Sathiya. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

जान लेके किस्मत ने बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अजी सुनते हो?
3: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
5: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
2: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
1: And pistachio lamb chops?
2: Full on flavor ka fusion.
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स or older to gain।
12: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली फ्राइडे मॉर्निंग। इट इज द 18th ऑफ सितंबर टुडे।

0: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो,
1: हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म।
0: सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर अ कम्युनिटी एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ लाइक द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
5: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
5: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
6: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
3: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
6: Barista House, richness of biryani bliss.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
4: वी नीड टू टॉक।
9: अब क्या हुआ?
4: Nothing, it's not you.
9: Oh no.
4: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
10: Ye tara wo tara har tara.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
4: तो पहले चेक कर लो उसपे डील है या नहीं।
13: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
3: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे

0: लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

0: We've covered a lot, and it is only 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: Are wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, crafted for moments that matter. Visit श्रीकृष्णा.com.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
15: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
17: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
18: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
17: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
19: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
11: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
19: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
19: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
19: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
15: हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
8: Bindas bolo.
20: बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
21: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
0: Let's get started with this hour of the program. Welcome if you are just joining us. It is Friday, the 18th of September, and looks like we tied 99 degrees yesterday, and we are forecasting the same temperature for today, tomorrow, as well as Sunday.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian. अब जाए तो जाए कहाँ?
6: Simple. Basera Grand. One destination, double the flavor.
7: मतलब crispy golden dosa?
6: Yes. Rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं.
7: Wow. Great food, full variety, and everyone's happy.
5: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy. Together.
8: अरे यार, घर मिल गया।
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
6: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
6: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, इरविंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
6: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
13: Hi, this is Sharvani. You are listening to Fun Asia Radio.

A very zingard good morning to the entire DFW today. Officially, आज Friday आ गया है और unofficially weekend भी. This is Rumita and welcome to Gupshup Gully only on 104.9 FM Funisha Radio, जहां Friday को हम serious conversations को थोड़ा side में रखते हैं और because वीकेंड जैसे कि मैंने कहा इज नॉकिंग ऑन द डोर. वैसे एक सवाल है, आपका वीकेंड पर्सनालिटी क्या है? यू नो फ्राइडे आफ्टरनून तक हम सब बड़े एम्बिशियस होते हैं कि इस वीकेंड घर क्लीन करना है, ग्रोसरीज जानी है, फ्रेंड से मिलना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, मूवी भी देखनी है. इतने सारे प्लान्स होते हुए भी सैटरडे 11 बजे सिर्फ ब्लैंकेट, चाय और हमारा फोन और मन में और दिल में एक ही सवाल और एक ही चिंता या एक ही स्टेटमेंट, कल कर लेंगे ना यार क्या है. सो टुडे आई वांट टू नो, आर यू टीम वीकेंड प्लानर और टीम देखेंगे जो होगा यार क्या फर्क पड़ता है. कॉल मी एट 972-235-5555. स्टूडियो का नंबर तो आज बताई है आपको, बिकॉज आज का फर्स्ट आवर इज ऑल अबाउट वीकेंड प्लान्स, फूड, मूवीज एंड फ्राइडे वाली गुड मूड एनर्जी. सो लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट द वीकेंड साउंड ट्रैक.

0: tracks that put you on the right track.
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails, and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
12: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
5: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvin Das, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio, and that was Sonu Nigam from the movie Garam Masala. And if you've heard this song after a long time, just like I did, I know wo bachpan wali memories aa hi jaati hai. But wo bachpan wali memories are all the late 90s, early 2000s, and even aaj tak bhi jo sare hit गाने और आपके फेवरेट गाने, आई एम श्योर आपके टॉप फाइव फेवरेट गानों में से एक ऐसा या दो ऐसा गाना तो होगा ही जो सोनू निगम का है. एंड वो पूरा ऑरा उनका आप लाइव देख सकते हो दिस 26th of September एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन, बिकॉज सोनू निगम विल बी लाइव इन कॉन्सर्ट विथ रेवोल्यूशन. सारे आपके फेवरेट गाने एंड दैट आइकॉनिक वॉइस, एवरीथिंग विल बी लाइव. अगर अभी तक आपने टिकट नहीं खरीदे, देन विजिट टिकट मास्टर. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करिए 855-360-SHOWS, दैट इज 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन बाय सोनू निगम, और इस इवेंट के एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फनीशिया नेटवर्क.

It's 10:36 by the studio clock. You're listening to Gup Shup Gali with me, Rimita, only on 104.9 FM, Funny Shah Radio. और ये जो last गाना मैंने play किया of सोनू निगम, अगर आप मुझे बता सकते हैं which leading Bollywood actress was featured in this song, तो आपकी और मेरी दोस्ती पक्की यार, हर वक्त giveaways नहीं होते, आप ऐसे ही call करके मुझे बता सकते हो, गपशप कर सकते हो, क्योंकि this is Gup Shup Gali and that Gup Shup is about the weekend. You know what I think has quite quietly become a luxury in our adult life is that having absolutely no plans. Seriously, bachpan mein agar weekend par kuch plan nahi hota tha, then we were seriously bored. Aur ab agar koi bole, yaar, Saturday, yahan pe invitation hai, ya ye kuch hai, and you say, yaar, no, let me be. Aur yes, nahi, ya no mein, ek ajab si khoobsurti hai. No alarm, no birthday party, no Costco run, bus. दो आई मीन आप अपने बेड पे पड़े हो विथ योर फोन, और ऐसे नहीं पड़े हो, उल्टा होके पड़े हो, जस्ट टू बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट बी योर सेल्फ, एंड स्पेशली आफ्टर एन इंटायर वीक ऑफ वर्क, स्कूल शेड्यूल्स, ट्रैफिक, कुकिंग, मीटिंग्स, समटाइम्स डूइंग नथिंग इज एक्चुअली द प्लान. सो टेल मी, आपको अपना परफेक्ट वीकेंड के लिए प्लान्स चाहिए या सीक्रेटली मुझे बताना कैंसल्ड प्लान्स? एंड टू बी ट्रूथफुल, अगर कोई सैटरडे मॉर्निंग का प्लान कैंसिल कर देना, आजकल डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है, अंदर से एक अलग सी खुशी महसूस होती है. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. दिस इज रुमिता एंड आई एम ओपन टू योर गपशप.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
6: हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
8: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

It is a lovely morning, a Friday morning on the September of 18th, and you're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita, jahan pe पॉइंट ये है कि फ्राइडेज को सैटरडेज को संडेज को करना क्या है, और फ्राइडे इवनिंग का एक यूनिवर्सल मैरिड कपल कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होता है, यू नो, आज क्या करें, बाहर चले, हाँ कहाँ, तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, और 20 मिनट बाद भी दोनों इरिटेटेड, कोई कहीं नहीं जा रहा होता है. एंड द फनीएस्ट पार्ट इज डिनर के साथ भी दिस इज द सेम थिंग. इट्स इंडियन या मैक्सिकन या पिज्जा या थाली, एक सजेशन देगा तो दूसरा उसे रिजेक्ट करेगा, बट खुद सजेशन भी नहीं देगा. एंड आई जेन्युइनली थिंक डिसाइडिंग व्हाट टू डू इज समटाइम्स मोर एग्जॉस्टिंग देन एक्चुअली डूइंग इट. सो कपल्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आपके घर में वीकेंड का जो प्लान होता है वो उसका फाइनल डिसीजन मेकिंग चार्ज और डिसीजन मेकर कौन होता है, आप होते हो या आपके पार्टनर होते या फिर बच्चे होते, या फाइनली गूगल मैप डिसाइड करता है आपका प्लान. मुझे बताओ 972-235-5555 में, बिकॉज गपशप अभी भी शुरू हुई है, अभी अभी तो बहुत बाकी है गपशप का. लेट मी नो.

0: राम जी जरूर आपका भला करेंगे, बट अपने भला रहने के लिए आपको भी कुछ एफर्ट डालनी होगी, अपना भला खुद भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज आउट ऑफ योर नेटवर्क, देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ब्रिंग्स यू द पैशन हेल्थ डायरेक्ट, जहां पे यू कैन गेट एन अफोर्डेबल प्राइमरी केयर फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मच मोर। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस। इसीलिए अधिक जानकारी एंड फॉर द ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट द पैशन हेल्थ डायरेक्ट विच यू कैन गेट फॉर $85 अ मंथ, you need to call or text 214-666-6259. That's 214-666-6259. Or you can visit passionhealthphysicians.com. You know, Passion Health Primary Care is a primary care service located around the DFW metropolitan. Chahe McKinney ho, Allen ho, Irving ho, Plano ho, and Frisco bhi ho. And let me tell you, the Frisco location is now open on Saturdays and Sundays as well. To jaise ki maine kaha, if you are concerned about your health aur is saal ka annual physicals abhi bhi nahi hua hai, then Passion Health Primary Care is there for you.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

7 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. आज है फ्राइडे और शुड आई से इट्स अ फ्राइडे और DFW इट्स टाइम फॉर दैट फिल्मी फ्राइडे सेगमेंट ऑफ माई शो जहां पे वीकेंड वॉच लिस्ट का वो टाइम आपको मैं प्रेजेंट करने वाली हूं जब आप कंफ्यूज होंगे और ग्रुप चैट में डालोगे ये क्वेश्चन के चले आज मूवी चलते हैं और फिर अगले 40 मिनट सिर्फ ये डिसाइड करते रहोगे कि कौन सी मूवी. तो मैं आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन दूंगी, डिसाइड आप करना कि कौन सी मूवी आपको देखनी है. आज 18th of September जैसे कि मैंने कहा और दो बिग बॉलीवुड फिल्म्स आर गोइंग टू रिलीज टुडे बट दे आर वेरी डिफरेंट चॉइसेस. सो अगेन डिसीजन इज ऑल योर्स. पहला है मेघना गुलजार डायरेक्शन के मेघना गुलजार के डायरेक्शन में दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन. दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक कॉन्ट्रोवर्शियल केस के ऑपोजिट साइड्स पर है. सो एक्सपेक्ट अ इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर विद क्वेश्चंस अबाउट ट्रूथ एंड जस्टिस. एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ मेघना गुलजार films and her genre and her art of filmmaking like Talwar Ho or Razi Ho and every Meghna Gulzar films that you have watched earlier, I'm sure this time she is going to bring in something different as she always does. And for me, watching Kareena Kapoor Khan in the big screen reminds me of all the fascination I have had for, in fact still have for her. But abhi her roles are different, her choices of films are different. So if you are a KKK fan, watch this in the theater to grab the or to get the or to grasp the entire Meghna Gulzar versus thriller versus Kareena Kapoor Khan versus Prithviraj ka charm. And trailer looks awesome, so do give it a thought. Aur agar aapka Friday mood thoda lighter hai, there's a Vibe. Kunal Khemu writes, directs and stars in this action comedy alongside Preeti Zinta. Story mein do friends ki already chaotic life और भी वाइल्ड हो जाती है. सो कुणाल का अगर मडगांव एक्सप्रेस आपने देखा है, मुझे तो इनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत पसंद है और आई एम क्यूरियस हाउ विद दिस फिल्म दैट इज वाइब गोन मेक यू वाइब टू दैट फिल्म्स ट्यून. वैसे एक वाइब की बात हो रही है, लेट्स ट्यून इन टू दिस टाइटल ट्रैक ऑफ दिस मूवी.

You are listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gup Shup Gully with me, Ramita. And this segment, Filmy Friday. Yaar, theater plans me. टाइमिंग पार्किंग टिकट्स आई मीन टिकट्स ऑफ द मूवी पार्किंग एंड वो दोस्त जो बस 5 मिनट दूर है बोलकर भी जब घर पर होता है यार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग तो लगता है और इसी चक्कर में हम थिएटर में मूवीज देखना अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो OTT गैंग अगर आपके लिए आज मैं रिकमेंडेशन दूँ तो क्या मुझे आप कॉल करके थैंक यू बोलोगे बिकॉज आज है सितंबर 18th और जाकिर खान का स्टैंड अप स्पेशल पापा यार इज कमिंग ऑन अ वेरी प्रीमियम OTT स्टेशन और OTT चैनल इसमें जाकिर अपने पापा के साथ बदलते रिश्तों का जो उनका स्टाइल है यार एक इमोशन भी होता है कॉमेडी भी होता है बचपन की मेमोरीज भी होती है दैट ही इज एक्सप्लोरिंग अगेन विद दिस स्पेशल विच इज कॉल्ड पापा यार वैसे देसी डैड्स का बस एक छोटा सा सवाल है कभी वो छोटा होता नहीं है पहले पूछेंगे यार खाना खाया फिर गाड़ी जॉब सेविंग्स और लाइफ का प्लान जो होता है उनका फुल ऑडिट हो जाता है आई मीन कन्वर्सेशन विद डैड्स दीज डेज आर अ लिटिल डिफरेंट डोंट यू थिंक वैसे फ्राइडे नाइट अगर रिमोट हाथ में है और नेटफ्लिक्स आपको पूछ रहा है दैट प्रीमियम OTT चैनल दैट आई वॉज रेफरिंग टू कि हु इज वॉचिंग आज इसका आंसर बहुत केयरफुली देना बिकॉज लास्ट स्टोरीज 3 इज रिलीजिंग टूडे फॉर ग्रोन अप व्यूइंग सो फैमिली मूवी नाइट वाली पिक बिल्कुल नहीं है 4 डिफरेंट स्टोरीज है अबाउट लव डिजायर एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स फ्रॉम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग किरण राव शकुन बत्रा विक्रमादित्य मोटमाने एंड विशाल भारद्वाज सो बॉलीवुड में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए एयरपोर्ट चीज तो होता ही है रियल लाइफ में अगर एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो तो काफी मुश्किलें सॉल्व हो सकती है देखना ये है कि लव स्टोरीज 3 लव स्टोरीज 1 और 2 के एट पार है या इससे भी कुछ ज्यादा है आइए एक्सप्लोर करेंगे आज रिलीज तो हो रहा है आई एम श्योर यू गोना हैव अ वंडरफुल वीकेंड OTT वॉच अगले हफ्ते मुझे बताना कि ये कैसी लगी स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM Phoenicia Radio द नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय आई मीन इज अ रिक्वेस्ट फॉर सफी

0: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. Gupshup हमारी जारी है और जारी रहेगी अगले एक घंटे तक. We'll be back after a short break. Stay tuned, कहीं मत जाइएगा, because यही है Dallas की धड़कन. Stay tuned and keep listening.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
5: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
6: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट

0: उमर और विजिट attorneyumar.com।
1: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
2: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
1: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
2: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
3: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
3: Barista House, richness of biryani bliss.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगा एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो.
0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
15: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

0: 37 minutes past 11 o'clock. You're listening to Gup Shup Gali with me, Rumita, only on 104.9 FM, Fun Asia Radio. And this song was a request by DJ. उन्होंने कहा कि यार मेरा एक request है, पता नहीं आप play करोगे या नहीं करोगे, but please अगर आपको ठीक लगे तो आप play कर देना. यार हमारे लिए गाने सिर्फ गाने हैं. I know they should be hit, they should be contemporary, and they should be enjoyable, and that's what I had played for you. वैसे थोड़ी देर पहले एक बंगाली लिसनर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि यार रमिता, पंजाबी और गुजराती फ्लेवर के गाने तो बजते हैं आपके शो में, आप खुद एक बंगाली हो तो मेरे लिए एक बंगाली गाना आप प्ले कर पाओगे. मैंने सोचा यार बात में तो दम है, सही है, तो ये जो अगला गाना है वो मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करूंगी. उन्होंने नाम नहीं बताया एंड ही सेड कि मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट डेफिनेटली अगर आप एक मेरे लिए बंगाली गाना प्ले कर सकते हो तो डेफिनेटली कर देना. और यू नो फनीशिया की खूबसूरती यही है कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर और म्यूज़िक के थ्रू हम सब के साथ एक साथ है. दैट्स हाउ आर यू नो ब्रांडिंग गोज, दैट वी ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर. तो मेरे बंगाली लिसनर्स वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और बाकी सब भी रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वो बंगाली गाना है जिस पर शायद आपने पिछले साल या अभी भी इंस्टाग्राम में रील तो डेफिनेटली बनाया होगा, क्योंकि ये सॉन्ग है ही इतनी कैची. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM. दिस इज ऑल फॉर दोज बंगाली लिसनर्स ऑफ माइन.
1: আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে,

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. And time for your Filmy Friday quiz, which can get you a fun pizza kitchen coupon of $10, where you can experience that brand new Mexican-inspired pizza line up. And वो सिर्फ पिज्जाज नहीं है यार, वो फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा होते हैं. फिएस्टा वेजी से लेकर फियरी पोयो लोको एंड द सी फूड पैक्ड सिनोर कैमरॉन, एवरी बाइट इज बोल्ड, एक्साइटिंग एंड इज मेड टू इम्प्रेस. तो आपको अगर ऐसे ही पिज्जाज ट्राई करने हैं, जस्ट लिसन टू दिस थ्री क्लूज दैट आई एम गोना गिव यू टू इन ऑर्डर टू गेस दिस मूवी, जिनका एक सीक्वल भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है. और रिलीज का डेट ही इसका एक क्लू है, इस फिल्म का एक क्लू है, दैट इज 2nd of October. तो शुरू करें, थ्री क्लूज एंड ऑल यू नीड टू डू इज डायल 9722355555 एंड टेल मी द नेम ऑफ दिस मूवी. नंबर वन, हीरो इज एन ऑर्डिनरी फैमिली मैन जो कि 8th पास है. पास है या फेल है मुझे याद नहीं है, बट ही इज एन ऑर्डिनरी फैमिली मैन. क्लू नंबर टू, उसकी मेमोरी डेट्स के मामले में बहुत ही सिलेक्टिव है एंड ही हैज दिस फ्लेयर ऑफ क्रिएटिंग एंड राइटिंग स्टोरीज एज वेल, विच सम वे ऑर द अदर इज सेविंग हिज फैमिली. एंड क्लू नंबर थ्री, उसकी कहानियों से गोवा पुलिस बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है. सो अगर आपको पता है कौन सी मूवी है जिसके बारे में मैं ये बात बोल रही हूँ और उसकी सीक्वल जो 2nd October को रिलीज होने वाली है, यार इससे ज्यादा इजी क्लू और नहीं हो सकता. कॉल करो और जीत लो दिस फन पिज्जा किचन गिव अवे. द नेक्स्ट ट्रैक इज अ रिक्वेस्ट बाय चीनू फ्रॉम द मूवी उड़ान.

0: है।
1: पर ऑटो ले लेगा यार।
0: नहीं जाने दो, तुम मेरे साथ चल रहे।
1: सर ने बोला ये रुको।
0: सर ने जो बोला भूल जाओ, हॉस्टल जाना है तुम्हें। नहीं ना, हम जहाँ जाएंगे तुम हमारे साथ जाओ।
1: मैं अभी आया।

मैं अर्जुन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उसे आपके कूड़े भी समझ में नहीं आए प्यार, और जो आपने किया किसी भी हालत में दूंगा। आपको आपकी नई शादी, नई फैमिली और नई बेटी मुबारक हो। आपका बेटा रोहन।

You're listening to 104.9 FM Funny Show Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. और मुझे आंसर मिल गया है ऑफ दिस गिव अवे क्वेश्चन ऑफ द गिव अवे क्विज दैट आई हैड प्लेड. यस, द मूवी नेम इज दृश्यम और 1, 2, 3 कोई भी आप पार्ट पकड़ लो, द कॉन्सेप्ट और द प्लॉट इज सेम फॉर ऑल द थ्री. वैसे द कंक्लूशन दृश्यम 3, द कंक्लूशन इज रिलीजिंग ऑन 2 अक्टूबर. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कीप एन आई ऑन दिस बिकॉज यार इस स्टोरी को खत्म करो. च्युइंगम की तरह दृश्यम भी खींचा जा रहा है. वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गिव अवे को जीतने का गिव अवे जीतने का नाम लेट मी फ्रेम इट प्रॉपरली. इस गिव अवे को जिन्होंने जीता है उनका नाम भी को इंसिडेंटली अजय है. सो अजय जी, कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मिला है दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आप जाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए दिस पिज्जा. वैसे आपने गेम तो जीत लिया है, बस एक फॉलोअप है. 2nd और 3rd अक्टूबर आप कहाँ थे लास्ट ईयर या इस साल क्या करने वाले हो? जैसे ही रिलैक्स, आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. रेडियो पर आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट कॉल मी बैक एंड से के हा हा हा मैं तो ये कर रहा था. बस ऐसे ही विजय सलगांवकर की फैमिली कहाँ गई थी ये तो हम सबको पता है. आगे देखते हैं इस 2nd अक्टूबर क्या होता है विथ दृश्यम 3.

8 minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gully with me, Ramit. And this song was requested by another pretty woman, Mariam. Mariam, I'm sure the song has made you happy as it has made me. वेलकम टू दिस अग्नियांत फ्राइडे सेगमेंट, जहां पे हम बात करते हैं थोड़े रिश्तों की, खट्टे मीठे रिश्ते जो हमारे डेली लाइफ में है. तो आई वॉज रीडिंग आउट सम यू नो रेडिट पोस्ट्स, जहां पे एक यूजर ने कमेंट किया है कि माई हस्बैंड एंड आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 years और रिसेंटली ही आस्क्ड फॉर माई फोन पासवर्ड. मैंने तो ना कह दिया बिकॉज आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, बट बिकॉज आई फील एवरीवन डिजर्व्स सम प्राइवेसी. एंड नाउ ही सेज इफ देयर इज नथिंग टू हाइड तो क्यों यार, हाउ डज इट मैटर. एंड समहाउ दिस हैज बिकम अ ट्रस्ट इशू बिटवीन अस. ऑफ because there are actually two very different things right now, which is my take on this entire situation. Ek to hai privacy aur dusri hai secrecy. You know, marriage mein transparency bahut zyada important hai, absolutely hai. But does marriage automatically mean zero personal space? आपके चैट्स हो सकते हैं आपके सिबलिंग के साथ, आपके दोस्तों के प्राइवेट कन्वर्सेशन हो सकते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, आपके सर्चेस हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड समवन थिंकिंग वी आर मैरिड, देन व्हाई शुड अ फोन पासवर्ड बी सच अ बिग डील. सो आई एम थ्रोइंग अ कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन, शुड स्पाउसेस नो ईच अदर फोन पासवर्ड, येस और नो? और मोर इम्पॉर्टेंटली, प्राइवेसी और सीक्रेसी में लाइन कहाँ खत्म होता है? स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555. एज यूजुअल, आपकी और मेरी गपशप जारी है.

ओके ऑल राइट, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, अभी भी ब्लिंक हो रहे हैं, बट आई कुड टेक ओनली अ फ्यू एंड एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड DFW इज डिवाइडेड, बट समवट पर्सनल स्पेस का पल्ला थोड़ा सा भारी है. सम ऑफ यू आर सेइंग ऑफ कोर्स माई स्पाउस नोज माई पासवर्ड, देयर इज नथिंग प्राइवेट बिटवीन अस, एंड सम आर सेइंग ट्रस्ट का मतलब फोन चेकिंग नहीं होता है. एंड हियर इज व्हाट आई थिंक द कन्वर्सेशन गेट्स इंटरेस्टिंग. अ पासवर्ड इटसेल्फ इजंट रियली द रिलेशनशिप इशू, द रीजन बिहाइंड आस्किंग फॉर इट इज इफ इट्स मेरा फोन वहां है, जरा मैसेज चेक कर दो क्या मैसेज आया है, दैट्स नॉर्मल एक्सेस. बट इफ इट बिकम्स की फोन दो मुझे वेरीफाई करना है तुम कर क्या रहे हो, नाउ दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ समवन सडनली बिकम्स एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ऑफ अ फोन व्हेन दे नेवर वेयर बिफोर, पार्टनर नेचुरली आपका नोटिस करेगा. सो परहैप्स हेल्दी रिलेशनशिप डोंट नीड एनी सर्वियलेंस, दे नीड इनफ कम्युनिकेशन दैट नाइदर द पर्सन फील्स के इसकी जरूरत है. बट दैट्स जस्ट माई टेक, आपके कॉल्स आते रहने दीजिए. फिलहाल अगर रिलेशनशिप से थोड़ा हटके अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं तो डैलस के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप अटके हुए हैं आपके करियर में और सोच रहे हैं कि AI आपका वर्क स्पेस खा जाएगा, देन डेफिनेटली हेड ऑन टू दिस करियर ग्रोथ वर्कशॉप विच इज हैपनिंग ऑन द 19th of September, वेयर 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ विल बी देयर फॉर अ पावरफुल कंसल्टेशन एंड गाइडेंस, जहां पे आप अपने आप को रिपोजिशन कर सकते हो, अपने वैल्यू को रिपोजिशन कर सकते हो. यू कैन स्ट्रेंथन योर लीडरशिप स्किल्स एंड प्रेजेंस एंड इन अ वे एक्सेलरेट योर करियर विथ क्लैरिटी ऑन कॉन्फिडेंस. टू रजिस्टर दिस workshop which is happening tomorrow on the 19th of September, you have to go to this website playitful.com/Dallas, which is playitful.com/Dallas, and start building your powerful career transformation story.

एंड दैट वॉज मैं वापस आऊंगा, और ए आर रहमान की ये क्लासिक ट्यून जो है, जो बीट है, जो पूरा रिदम है गाने का, ये रिदम ऑलरेडी हम सुन चुके हैं. कहाँ सुन चुके हैं? अगर आप रियली बॉलीवुड बफ हो तो डेफिनेटली मुझे बताना. मुझे तो आंसर पता है, बट आई वॉन्ट टू नो आपकी नॉलेज क्या है. दिस इज गपशप गली विद मी रमिता, एंड इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ माई शो टुडे. आज का वीकेंड प्लानिंग से शुरू होकर हमने बहुत सारी बातें की. इनफैक्ट वी टच डाउन अ लिटिल बिट ऑफ रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और उनके थोड़े से कारनामे. बट अगर वीकेंड का प्लान अभी भी नहीं किया, इनफैक्ट आज का लंच प्लान अगर हो चुका है तो डिनर का प्लान मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप मेरी तरह वो यू नो दैट सेगमेंट ऑफ बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का, दाल मखनी वाले बंदे हो, देन इट इज अ काइंड ऑफ डिनर दैट यू विल लाइक. सो Head on to Tandoori Flame in Garland because they have this flame hour Monday to Thursday 5 to 8 PM. वैसे it's not valid for today, but अगले हफ्ते तक आप ये planning कर सकते हो. You can order any two entrees and receive one complimentary appetizer. For more details, you can visit the Tandoori Flame tx.com. ये उनका वेबसाइट है. उनके वेबसाइट में जाइए एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. मंडे टू थर्सडे 5 to 8 PM एट द तंदूरी फ्लेम फ्लेम आर. बेसिकली वी एड अ देसी नॉर्मल देसी फ्राइडे कन्वर्सेशन टुडे एट दिस गपशप गली, बट आई एम गोना रैप अप विद वन थिंग कि हर सिचुएशन का परफेक्ट आंसर नहीं होता है. समटाइम्स अ लिटिल कम्युनिकेशन, अ लिटिल बाउंड्री एंड थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर कैन सेव अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ड्रामा, एंड दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम माई गपशप गली टुडे. दिस इज रमिता साइनिंग ऑफ. हैव अ फैंटास्टिक वीक इन DFW. ईट समथिंग दैट यू लव, स्पेंड टाइम विद योर पीपल यू एक्चुअली like, and please Monday ke problems ko Monday tak hi rehne dena. See you on Monday on Gapshap Gali, only on 104.9 FM Funny Share Radio.

0: tracks that put you on the right track.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
6: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: हाय डैलस, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
6: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
7: हेलो, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून डैलस, दिस इज योर होस्ट आयुष। यू आप सुन रहे हैं फनीशा 104.9 एफएम और फ्राइडे की दोपहर। So where's the party tonight, Dallas? Weekend आ रहा है यार, वीकेंड आते चैन की सांस।

सो वेयर इज द पार्टी टुनाइट डैलस, क्या चल रहा है इस वीकेंड, कैस क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए मन फ्राइडे आते ही दिल में एक अलग सी यू नो बेचैनी सी होने लगती है, जल्दी घर जाने की, वापस घर जाके आराम करने की, पार्टी करने की, वीकेंड के प्लान करने की, और यहाँ तो वीकेंड्स बिजी चलता ही रहता है। और आज ऐसे ही कुछ प्यारे और मज़ेदार और हैपनिंग गाने लेकर के आने वाली है आपकी होस्ट आयुषी फनेशिया 104.9 FM पे। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। अगर ऐसे ही कुछ गाने आपको भी सुनने हैं तो या फरमाइश करने हैं तो कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे।

आपका सपनों का घर आपके करीब है, बिल्कुल करीब है, जिस जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना करीब है. सिंस 1998 ड्रीम है मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग एंड रीफिनेंसिंग. कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com. ड्रीम होम मॉर्गेज मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. तो आपके सपनों का घर अगर आपको चाहिए तो ड्रीम होम मॉर्गेज को कॉल करिए. इनका नंबर है 972-245-5626. शो को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही कुछ मज़ेदार गाने प्ले करते हैं. फ्राइडे का वाइब बनाए हुए उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जल्दी ही.

हल्ला रे के बाद झल्ला वल्ला, टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सॉन्ग्स विदाउट ज़्यादा बातचीत, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ी सी बातें, बहुत सारा गाना। और आपकी होस्ट आयुषी फनेशिया 104.9 FM पर।

होप यू आर लविंग दीज नंबर्स. और ये जितने भी गाने अभी तक मैंने प्ले किए हैं, इनमें सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपने पीक टाइम पे डांस कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, एक्ट किया है उन्होंने. इसके बारे में ही अगले सेगमेंट में चर्चा करेंगे. फिलहाल एक और गाना लेकर के आ रही हूँ, बड़ा ही मज़ेदार. कार्तिक कॉलिंग से, एंड इस गाने में है दीपिका पादुकोण.

0: That was Deepika Padukone and Farhan Akhtar in Kartik Calling. And Kartik, वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी से जाइए, वापस आइए और फिर और मजेदार गाने सुनेंगे और बातें करेंगे Fun Asia 104.9 FM पर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
8: Front page का तो पता नहीं, पर तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
7: कैसे?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
9: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
11: उमर ख्वाजा.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
17: तुमसे मिलके दिल का है.
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment. Non-stop entertainment. Fun Asia 104.9 FM पे और स्वागत है आपका इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज के शो में हमने कुछ फ्राइडे नाइट के म्यूजिक से स्टार्ट किया और करते करते कुछ कुछ ऐसे गाने
11: मैं प्ले करती गई अनइंटेंशनली, और फिर जब मैं उनके बारे में उनको देख रही थी और बैठ के सोच रही थी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया, और वो ख्याल आया अभी के सोशल मीडिया के एक ट्रेंडिंग टॉपिक को रिलेट करते हुए. मैंने फिर बैठ के ना यहाँ स्टूडियो में नोट डाउन किया, मैंने प्रियंका चोपड़ा के गाने बजाए, मैंने प्रीति जिंटा के गाने बजाए, मैंने परिणीति के, गौहर के, दीपिका पादुकोण के गाने बजाए, और अब इसके बाद मैं प्ले करने वाली हूँ एक ऐसा ट्रैक जो है कैटरीना कैफ का. और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो शायद आपके फीड में भी ये आ रहा होगा कि कैटरीना कैफ इज़ बीइंग ट्रोल्ड, ब्रूटली ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर हर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट, कि किस तरह से वो बदल गई हैं, किस तरह से वो दिख रही हैं, और इस पर कई लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियाँ दी हैं. तो एक बार आपको रिमाइंड करते हैं इस गाने के साथ कि वॉट करीना वॉज इन हर पीक टाइम, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर हर विद दिस सॉन्ग.

0: That was Katrina Kaif, काला चश्मा वाला गाना, बार बार देखो है फिल्म का नाम. और आज ये गाना इंटेंशनली पे किया है मैंने अपने इस सेगमेंट में, क्योंकि इंटेंशनली मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में ना हम सब बात करने से कतराते हैं. हमें लगता है क्या ही बात किया जाए, तो बहुत नॉर्मल है. नॉर्मल नॉर्मल ही तो आजकल नॉर्मल नहीं रहा है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा, 3-4 दिन से देख रहे हो, कटरीना को बहुत ट्रोल किया जा रहा है. एंड सिंस आई एम इन दैट फेज टू, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है. और वो बात है पोस्टपार्टम के बारे में, कि कैसे एक लड़की जब माँ बनती है तो वो पोस्टपार्टम से जाती है, पोस्टपार्टम वेट गेन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम चेंजेस योर माइंड बॉडी सोल, एवरीथिंग चेंजेस. एंड नाउ पीपल हैव द ऑडासिटी टू कम फॉरवर्ड एंड यू नो डिस्कस दिस ऑन सोशल मीडिया कि आपका चेहरा बदल गया, आप कितनी मोटी हो गई हैं, आप कितनी भद्दी हो गई हैं, आपका करियर खत्म हो गया है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन कटरीना कैफ वॉज यू नो एट हर प्राइम इन बॉलीवुड, एंड इतनी मूवीज करी हैं उन्होंने. एंड इनफैक्ट बारबी ने अपने 50th एनिवर्सरी पे कटरीना का एक बार्बी डॉल लॉन्च किया था. मैटल चोज टू सेलिब्रेट कटरीना कैफ फॉर दैट. एंड वी आर नाउ सीइंग हर गेट ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर जस्ट अ प्रेगनेंसी गेट वेट गेन, विच इज रियली वियर्ड. तो इसके बारे में और बात करेंगे, बिकॉज शी इज़ नॉट द ओनली वन. हर बार जब भी किसी एक्ट्रेस ने ऐसे वेट गेन किया है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत बार ट्रोल किया गया है. बट ऐसे लोग ट्रोल करते हैं जो इस सफ़र से गुजरे ही नहीं हैं.
1: Future, man.

0: ओके डैनिस, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में एक होम मॉर्गेज एक्सपर्ट है माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम की तरफ से, जो फैमिलीज को होम लोन ऑप्शन समझाने और होम बाइंग प्रोसेस को सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं। आज हम इनसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो हर होम बायर के लिए यूजफुल होंगे। हेलो शेफाली, हाय, वेलकम टू फाइनेंशिया।
1: गुड आफ्टरनून टू एवरी वन, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: ओके, सो टेक्सास होम ओनर्स के कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहेंगे आपसे शेफाली। अगर आपके घर में इक्विटी है लेकिन आपको पता है उस इक्विटी को एक्सेस करने का ऑप्शंस क्या क्या है, ये आप बताना चाहेंगे हमारे टेक्सास के होम ओनर्स को।
1: श्योर, दो कॉमन ऑप्शंस होते हैं इसमें, ही लॉक और होम इक्विटी लोन, जिसे ही लोन भी किया कहा जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है? हीलॉक, हीलॉक इज होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, जो एक क्रेडिट लाइन की तरह काम आता है, जो आपकी होम की जो इक्विटी होती है उससे वो लाइन ऑफ क्रेडिट सिक्योर होती है, जिसमें आपको एक लिमिट दी जाती है अप्रूव्ड, जो आप उसको यूज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अंटिल योर ड्रॉ पीरियड, विच इज यूजली लाइक 3 ईयर, 5 ईयर, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन यू सिलेक्टेड। सो उसके बेस के ऊपर आपको जो भी घर में रिनोवेशन, डेट कंसोलिडेशन या कुछ भी एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए वो लाइन ऑफ क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं। और उसका एक एडवांटेज ये है कि आपको जितना नीड है उतना ही आप निकाल के यूज कर सकते हैं, एंड देन यू पुट इट बैक। दो द टर्म इज 30 ईयर, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ड्रॉ पीरियड और 5 ईयर ड्रॉ पीरियड यू आर एबल टू टेक दैट अमाउंट आउट एंड देन पुट इट बैक, टेक इट आउट, पुट इट बैक। सो उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू सिलेक्टेड। दूसरा ऑप्शन है ही लोन, जिसमें आपको एक फिक्स्ड लोन मिलता है, जस्ट लाइक अ सेकेंड लोन, सेकेंड मोर्गेज, जो आपके फर्स्ट मोर्गेज को अफेक्ट नहीं करता है, रेट टर्म्स नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ सेकेंड लोन, यू आर टेकिंग इट आउट विथ अ फिक्स पेमेंट्स, मंथली पेमेंट्स। उसके भी टर्म्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो एंड व्हाट ऑप्शन वुड यू लाइक टू सिलेक्ट, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर एंड 30 ईयर। सो ये दो ऑप्शन होते हैं कॉमन होम इक्विटी के लिए। डिफरेंस खाली ये होता है, हीलॉक इज मोर फ्लेक्सिबल एज पर योर नीड, और ही लोन में यू आर मोर प्रेडिक्टेबल दैट दिस इज वॉट माई मंथली पेमेंट इज गोइंग टू बी एंड दिस इज अ वन टाइम फिक्स्ड अमाउंट आई एम गेटिंग इट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग होम इक्विटी लोन ऑप्शन अवेलेबल एज पर योर सिनेरियो, यू कैन रीच मी एट 469-734-3338।
0: ओके, और हमारे जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, क्या आप वो अगर रेंटल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशनल इनकम डॉक्यूमेंटेशन जो क्वालिफिकेशन को डिफिकल्ट बना रहा है, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी?
1: उनके लिए DSCR लोन है जो एक ऑप्शन हो सकता है। उसका मतलब होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, DSCR, जिसमें लेंडर प्राइमरीली ये देखता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्वालिफाइंग रेंटल इनकम क्या है और उस प्रॉपर्टी के रिक्वायर्ड हाउसिंग एक्सपेंसेस क्या है और वो कितना सपोर्ट करती है आपकी जो मोर्गेज पेमेंट है और आपकी जो रेंटल इनकम है, उसके बेस पे आपका रेशियो डिसाइड किया जाता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट अ क्वालिफाइड फॉर दैट अमाउंट, लोन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मंथली रेंट है 2500 और आपका मोर्गेज एंड HOA एंड टैक्सेस ऑल टुगेदर कम्स टू $2000, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सो वी विल डिवाइड, टेक 2500 योर रेंटल इनकम एंड योर हाउसिंग एक्सपेंस एंड डिवाइड इट 2500 बाई 2000 गिव्स द 1.25 DSCR रेशियो। दोज आर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए ये स्पेसिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है, जो काफी जो प्रोग्राम्स है जिसमें ट्रेडिशनल इनकम देखी जाती है इसमें नहीं देखी जाती है। इसमें कंप्लीटली इट क्वालिफाइज यू बेस्ड ऑन द रेंटल इनकम दैट इट इज गोइंग टू जनरेट इन द मार्केट इफ यू आर परचेसिंग इट, और लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग टू कैश आउट फ्रॉम इट, ऑन दैट इट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इक्विटी दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इक्विटी है उसके बेस के ऊपर, और आपका क्या रेंटल इनकम है उसके बेस के ऊपर भी आप कैश आउट उसमें से भी कर सकते हैं. सो ये इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑप्शन है DSCR, which is very well designed to improve and increase your rental portfolio. If you have any questions regarding this, you can reach me at 469-734-3338. Again, any residential needs, purchase, refinance, cash out, home equity, DSCR, you can always reach out to me and discuss your scenario at 469-734-3338.
0: थैंक यू सो मच शेफाली. आपकी दी हुई जानकारी टेक्सस होम ओनर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होगी. एंड यस, यू कैन रीच आउट देम ऑन 469-734-3338. आई रिपीट, इट्स 469-734-3338. थैंक यू शेफाली.
1: थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड.
0: यू टू, बाय बाय. तो भाई आप जा सकते हैं इनके वेबसाइट पे भी, जो कि है myfamilyhomeloan.com. और चलिए आगे अपने शो को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और अच्छे गाने सुनाते हैं और फिर से उसी टॉपिक पे जाएंगे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि था कटरीना को ट्रोल करने के ऊपर से ज्यादा किसी को उसके वेट से, उसके पोस्टमार्टम वेट और उसके मदरहुड जर्नी के बाद जज करने से. है उस ब्यूटिफुल सॉन्ग जिसमें प्रियंका, जॉन और अभिषेक हैं.

0: कौन?
1: नेहा का बॉस।
0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: अब क्या करें?
0: जो भी करेंगे एक साथ करें।
2: So here was our Desi girl Priyanka, and we were talking about the postpartum journey of a woman, wherein I chose this topic today because Katrina Kaif was being trolled. It's not just Katrina was being trolled, it's overall all the women are always being trolled for her weight, especially jab ye weight gain na postpartum ke baad hota hai, jab changes hote hain. It's not just gaining weight. एक लड़की अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है उसके पास। हम लोग जब इस दौर से गुजरते हैं, जब माँ बनते हैं और जब हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, उस समय वी डोंट इवन वांट टू लुक एट आवरसेल्व्स, एंड आई एम नॉट अलोन इन दिस। मुझे खुद 3 साल लग गए हैं अपने आप को वहाँ वापस लाने में जहाँ पर मैं माँ बनने के पहले थी, एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपन, एंड Katrina Kaif also must be going through it. I don't know. Personally, तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है, but I think, she chose to come the way she looks because उस चीज़ को accept करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनके prime में थी जब वो, तब लोगों ने सवाल नहीं उठाए कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को maintain करके रखा है, कितनी मेहनत की होगी उसके पीछे। But अगर वो यार अभी का time अपने बच्चे के साथ वो जैसी है वैसे रह करके करना चाहती है spend, तो करने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। She is not just not an actress, so उन्होंने बहुत कुछ करा है। उनकी अभी कंपनी चल रही है, जितना मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा का उस कंपनी का टर्नओवर है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, एंड सारी एक्ट्रेसेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैटरीना और इट्स नॉट पर्सनल, इट्स अबाउट ऑल द वुमेन अराउंड। यार बहुत चेंजेस होते हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल होता है उसके बाद, एंड कोई कितना भी मदद कर ले, कोई कितना भी हेल्प कर दे, आपके अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं ना, वो किसी को नहीं समझ में आते हैं। द हार्मोनल चेंजेस आर देयर, स्लीपलेस नाइट्स आर देयर, यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, यू वांट टू ईट मोर, यू वांट टू बी हैप्पी आल्सो, बट यू आर नॉट एबल टू बी हैप्पी बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। देयर इज सो मच गोइंग ऑन व्हेन यू बिकम अ मॉम, एंड दैट ओनली अ वुमन कैन अंडरस्टैंड हु गोज थ्रू दिस जर्नी। इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी, दे से यस इट इज इंडीड, व्हेन यू लुक एट योर चाइल्ड इट इज, बट फॉर अस इट इज, it is, it kills us from inside. For a woman, it is very hard. So I hope all the women here must relate to it and should talk about it more and let people know yaar ki ye aasan nahi hai, bilkul bhi aasan nahi hai.
3: See it,
4: Swadhi, okay.

0: For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for your community, now growing with a brand new name and second Frisco location, introducing Lenoxy Medical. Founded by Dr. Mandeep Acharya, Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
14: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
13: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
14: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irwin.

0: Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
0: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ अनीशा रेडियो पर।
8: द दिल ऑफ डैलस हार्ट टू हार्ट फन एशिया।
9: वन एशिया 104.9 FM में फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को और आज स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक अबाउट अ वेरी यू नो अनटॉक्ड अनस्पोकन टॉपिक जो कि है पोस्ट पार्टम, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आज टॉपिक उठा लूँ। बिकॉज यार जब कोई भी टॉपिक ना बहुत चर्चित बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है आजकल के ज़माने में जब वो सेलिब्रिटी से रिलेटेड होता है, पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस जिससे ये टॉपिक रिलेटेड है। ये टॉपिक हर घर में उठने वाला है और ज़िंदगी में एक बार तो उठता ही है क्योंकि आपका एक तो बच्चा होता ही है और जब एक बच्चा होता है तो एक लड़की इस फेज से जाती ही है जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड दिस टॉपिक केम अप व्हेन आई वाज लुकिंग एट सम रील्स अबाउट कैटरीना एंड देन यू नो आई प्लेड सम म्यूजिक टुडे वेर इन सारी एक्ट्रेसेस अपने प्राइम में, गौहर खान हो या फिर परिणीति हो या फिर प्रियंका हो या फिर आलिया भट्ट हो या फिर दीपिका पादुकोण हो, एवरी वन चोज टू बी अ मॉम एंड एवरीबडी हैड डिफरेंट इफेक्ट ऑन देयर बॉडीज एंड दे ऑल जस्ट केम बैक, लेकिन दे कुड नॉट कम बैक द वे दे वर इन देयर 30s और 20s। हम भी नहीं आ पाते हैं यार। मैं खुद की अगर फोटोज उठा के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अपने 30s में जिस तरह से मैं रिग्रसली जिम करती थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था एंड यू नो आई हैड अ परफेक्ट बॉडी एंड बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसे था, लेकिन अभी सब बदल गया है। अब मैं उतना रिग्रेस वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिन पहले ही जस्ट एक नॉर्मल वर्कआउट करते करते मेरे पैर में चोट लग गई एंड 20 दिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाई। तो इस तरह के चेंजेस सिर्फ हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ हमारे घुटने आवाज़ कर रहे हैं, जहाँ हमारा बैठे बैठे सर दुखने लगता है, हमारे सर के आधे बाल चले जाते हैं, बट हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यार क्या ही कोई इसके बारे में बात करे, कोई टॉपिक है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इफ़ यू अग्री इवन अ लिटिल अबाउट दिस देन प्लीज़ डू कॉल मी एंड लेट मी नो 972-235-5555 क्योंकि स्टूडियो का नंबर है। और नहीं करना है इस टॉपिक के बाद तो कोई बात नहीं, हम तो करेंगे, मेरा काम है मोर्चा लेके खड़े हो जाना और चर्चा शुरू कर देना। सो आई डू दैट, बट येस इफ़ यू वॉन्ट रिक्वेस्ट एनी सॉन्ग यू कैन कॉल, इफ़ यू अग्री और डिसअग्री विथ मी डू कॉल एंड लेट मी नो। हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

0: What jhumka?
1: What jhumka? For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-ray, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa service, all under one roof. Walk in anytime. No appointment needed. तो टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक है जहां आप जा सकते हैं हफ्ते में सातों दिन 8 बजे से 8 बजे तक 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक। चलिए अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. एंड यस, आई डिड गेट अ कॉल एंड यू नो इट वॉज अ मॉम हु कॉल्ड एंड हु अग्रीड. एंड आई नो ऑल द मॉम्स वुड समवेयर अग्री टू दिस एंड दे माइट नॉट बी एबल टू कॉल और they do want to call पर नहीं call कर पा रहे होंगे. But I know this topic is really that has not been spoken about. Now people are talking but still बहुत percentage कम है यार. इसके बारे में हर घर में बात होनी चाहिए. अगर और मैं बात कर रही हूँ postpartum के जो issues हैं उसके, चाहे वो weight gain हो, चाहे वो body में changes हो, mind में changes हो, और बहुत ज़्यादा changes होते हैं. यहाँ तक चेंजेस होते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों को. एंड दैट्स ट्रू, फिगर्स शो दैट. फैक्ट है ये. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बोल रहा है बातों को एंड पीपल थिंक की बात नहीं करना चाहिए. बट आई थिंक पता है सबसे पहले इसके बारे में किसको बात करना चाहिए? आपके पार्टनर को, आपके पति को बात करना चाहिए, बिकॉज दे वॉच यू वेरी क्लोजली आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में. लेकिन पहले क्या होता था, पहले लड़की को उठा के मायके भेज दिया जाता था कि कौन इसके टैंट्रम झेले, कौन इसकी सेवा करे. इससे अच्छा इसको भेज दो इसके मम्मी पापा के पास, वही करेंगे. इसलिए किसी को पता ही नहीं होता था, पतियों तक को नहीं पता होता था कि कितने कठिनाई से गुजर रहे हैं हम. और हर किसी को, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रहा हो, और ये तो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली ज़्यादा होता होगा बिकॉज इतने सारे लोग, इतना सारा ज्ञान, एंड हमारे सिस्टम में इतना कुछ होता है. खाना नहीं ढंग से मिलता है आपको, लोग 10 तरह की सलाह दे करके जाते हैं जिस समय आपको सिर्फ और सिर्फ आराम की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. कई मॉम्स के साथ ऐसा होता है ना कि उसको अपना बच्चा ही प्यारा नहीं लग रहा होता है, उसको महीनों लग जाते हैं अपने बच्चे को ना उस तरह से प्यार करने के लिए, और देखते देखते समय बीत जाता है और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ मैंने खुद सुनी है अपने फ्रेंड्स से. जब हम बैठते हैं, लड़कियाँ बैठती हैं मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट इट. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट पीपल एड्रेस दिस, टॉक अबाउट इट, एंड दे एक्सेप्ट द फैक्ट कि पोस्टमार्टम जैसा कुछ होता है. और जो फट से लोग बोल देते हैं ना, यार कम खाओ, वजन कम करो, क्या कर रही हो, मतलब बहुत मोटी हो रही हो, इतना आसान नहीं होता है वेट लूज करना. दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड. एंड विद दिस एक और गाना आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. कॉल करिए, अपनी फरमाइशें दीजिए, अपनी बातें मुझसे कहिए, जो भी करना चाहते हैं आप स्टूडियो में कॉल करके बोल सकते हैं.

अगर आप H1 पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, एंड इफ यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटॉर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. और मेरे शो में चार चांद लग गए हैं आज, क्योंकि मेरे पास कॉल आई थी एक, और वो कॉल ना किसी मॉम की नहीं थी, एक डैड की थी. यस, डैड कॉल. सतीश जी कॉल्ड मी राइट नाउ एंड ही सेड, यू नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट यू हैव सेड, बिकॉज मेरी बेटी ऐसे फेज में पैदा हुई थी जब कोविड का टाइम चल रहा था, एंड उनकी वाइफ ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जो जो मैंने बोला, और उनके साथ साथ ही उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो सारे चेंजेस, वो सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, क्योंकि वो लोग अकेले थे, कोई था ही नहीं मैनेज करने के लिए, तो सब कुछ उनको हैंडल करना पड़ा. एंड ही कम्प्लीटली अग्रीज विद इट, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी एड्रेस एंड टॉक अबाउट दिस पोस्टपार्टम चेंजेस, डिप्रेशन एंड यू नो द मदरहुड जर्नी. इट्स नॉट अ केक वॉक. सिर्फ एक मदरहुड जर्नी के सुंदर सुंदर फोटोज दिखा करके हम लोग जो खुश हो जाते हैं, उसके पीछे की जो कहानी है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम ग्लैड दैट सतीश कॉल्ड मी एंड ही स्पोक अबाउट इट एंड ही गेव मी द परमिशन टू टॉक अबाउट दिस ऑन एयर. एंड येस, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, देन यू कैन डेफिनेटली कॉल, टॉक, शेयर योर एक्सपीरियंसिस ऑन 9722355555. एंड इफ नॉट, जस्ट रिक्वेस्ट अ सॉन्ग कर दीजिए, गाने गानों की फरमाइश, हम यहाँ बैठे हैं आपको सुनाने के लिए.

0: So here was this beautiful track from the movie Rais. Arijit Singh की आवाज में था ये गाना. शाहरुख खान है इस फिल्म में और हमने आज एक वायरल टॉपिक पे चर्चा उठाई और उस पर आपका बहुत सारा प्यार मिला. मतलब बस उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आ रहा होगा. कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु कॉल्ड. वी हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जल्दी से जाके वापस आते हैं फिर और बातें करेंगे.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
6: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
7: Matlab crispy golden dosa?
6: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis. और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
7: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
9: डील कहाँ?
0: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
4: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
11: Helpline, how may I help you?
12: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
11: Fear not, we have the perfect solution.
13: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
16: Not some or price?
13: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
17: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
18: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
5: वही आवाज
9: लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
20: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
21: तुमसे मिलके दिल का है।
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
20: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे, और आप मुझे सुन सकते हैं हर दिन फिलहाल कुछ दिनों तक 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक। हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश करती है आपकी होस्ट, कभी किसी टॉपिक पे किसी टॉपिक की कंट्रोवर्सी को उठा के लेके आते हैं, कभी थोड़े आपको नॉस्टैल्जिक कर देते हैं, कभी अपने देश के बारे में जिस देश को छोड़ के आए उसके बारे में बात करते हैं, कभी जिस देश में रह रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। बस ऐसी ही कुछ बातें और चर्चा हो रही होती है हमारे शो पे, एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो। फिलहाल आज हम बात कर रहे थे पोस्टपार्टम जर्नी की, पोस्टपार्टम जर्नी कैसे एक वुमन को चेंज करता है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और मुझे लगता है ना इस टॉपिक पे जितना बात करें वो कम है। और पोस्टपार्टम जो है या फिर मदर बनना, मदरहुड बनना औरतों को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। सी आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट हियर, दिस इज़ नॉट अ फेमिनिस्ट टॉकिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल वुमन टॉकिंग हु हैज़ बीन थ्रू इट एंड बीन थ्रू दैट जर्नी एंड स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज वेर इन यू नो आप अपने आप को वापस से वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप अपने 30s में थे, अपने अर्ली 30s में थे, द प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ जो कहते हैं ना, उस समय बहुत डिफिकल्ट है ये। और मुझे लगता है कि व्हेन यू बिकम अ मॉम यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ, नॉट बिकॉज योर स्टमक वॉज कट टू 7 layers एंड यू गॉट आउट अ बेबी ऑफ योर टमी, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है कि आपको ये जो आपका हीलिंग पीरियड होता है ना उसमें आपको इतना ज़्यादा टॉन्ट ताना बातें बोली जाती है कि आप बिल्कुल ना किसी भी चीज़ से इम्यून हो जाते हो। आपका वो जो बातें झेलने की जो शक्ति होती है आपकी वो उस लेवल पे चली जाती है दैट यू डोंट केयर एंड नाउ यू डोंट गिव एनी वेट टू दोज कमेंट्स, टॉन्स एंड व्हाट पीपल विल थिंक इन हाउ यू लुक, बिकॉज यू हैव वेंट थ्रू योर वर्स्ट फेज जब आपके बाल ऐसे खड़े होते थे और कोई आपको देखने वाला नहीं है, पर आपने खुद को देखा है, खुद को झेला है, और यू नो आपकी रातों की नींद उड़ी है, आपके दिन का चैन उड़ा है, आपका खाना पीना सब बर्बाद हो गया, तो आप इतने ज़्यादा उस और लोग मुझे बोलेंगे यार तुम ही हो क्या एक जिसने मदरहुड जर्नी झेली है या पोस्टपार्टम झेला। नहीं, सारी मॉम्स ने झेला, उनको पता है, दिल नो इट कि वो कैसे उसमें जाते हैं और निकल जाती हैं। किसी को, कई लोगों तो पता भी नहीं लगता है, पता लगने भी नहीं देती हैं, दे आर सो सो सो स्ट्रांग एंड दैट व्हाट इज बीइंग अ मॉम, स्ट्रांग बनना, इसीलिए हम स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर जब हमारे बच्चे भी ना हमें परेशान कर रहे होते हैं तो हम उतना परेशान नहीं होते हैं जितना आसपास के लोग हो जाते हैं। एनीवेज, टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, सोनू निगम की आवाज़ में है ये खूबसूरत सा गाना।

So that was Sonu Nigam, and you have to get ready for an unforgettable night of music because Sonu Nigam aa rahe hain Dallas live in concert Experience Revolution Saturday September 26 ko hai 8:30 baje se aur location hai Credit Union of Texas Event Center jo ki Allen mein hai. आपके फेवरेट गाने और वो आइकॉनिक वॉइस जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं. इट इज गोइंग टू बी ऑल लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एंड एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज फनेशिया नेटवर्क. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं आपको. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है. इस गाने के साथ आएगा गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. जी हाँ, तो अगर आपको $10 ऑफ जीतना है ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर, देन यू हैव टू कॉल मी ऑन द स्टूडियो नंबर विच इज 972-235-5555. कॉल करिए, सही जवाब दीजिए और लेकर के जाइए ये $10 ऑफ. तो भाई पहले आपको चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में बताएंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए. देखिए, मेरे शो पे गिव अवे जीतने के लिए बस दो ही चीज़ चाहिए आपको. स्टूडियो का नंबर सेव होना चाहिए आपके फ़ोन में और आपके हाथ में होनी चाहिए फुर्ती. तो फुर्ती मतलब यू नो यू हैव टू बी फास्ट एंड यू हैव टू बी लकी टू, क्योंकि जो पहला कॉल आएगा, सबसे पहला कॉल, वही लेके जाएगा गिव अवे. तो ये रहा वो गाना जिसके बाद आपको गिव अवे मिलने वाला है. Just you have to tell me the name of the movie. Phone uthaiye, call kariye aur bataiye kis film ka gana hai ye.

So here was this beautiful track from Teri Baaton Mein Uljha Jiya, और उलझ उलझ के भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया है रश्मि मिश्रा ने, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ओके, थैंक यू रश्मि फॉर कॉलिंग। और आप जा सकती हैं चंडीगढ़ बाइट्स और वहां से कलेक्ट कर सकती हैं $10 का गिफ्ट कार्ड, एंड सॉरी वहां से आप यू विल गेट $10 ऑफ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, यू विल गेट $10 ऑफ ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर। तो इंजॉय करिए वहाँ की स्पेशल थाली जो कि मंडे से फ्राइडे तक चलती है, विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस फ्लोटिंग डेली फॉर लंच ओनली। सो दिस प्लेस चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स। मेरे घर के बहुत करीब है, मैं यहाँ पे गई हूँ, खाना बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस प्लेस। एंड यू लिसनिंग टू योर होस्ट आयुषी ऑन फन एशिया 104.9 FM। आपकी होस्ट आयुषी AKA बिहारी मॉम, एंड हियर्स दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर यू गाइज।

Here was this beautiful track from the movie Cocktail 2. और अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको, बिकॉज वक्त बहुत कम है हमारे पास. जी हाँ, 10 मिनट घड़ी में है और 2-3 गाने प्ले करने हैं. बट अगर आपकी फरमाइश आज नहीं प्ले पाए खो पाई तो कल तो मंडे कर देंगे. यार सुनते रहिए मुझे, सुनना बंद मत करिए, बिकॉज आपकी होस्ट आयुषी मंडे से फ्राइडे तक 12:30 से लेकर के 2:30 बजे तक आपके साथ होगी. और मेरे बाद आने वाली है सुनहरी किरण, बहुत ही प्यारा और सुनहरा सा शो लेकर के. अ ब्यूटिफुल शो दैट इज डन बाय किरण, एंड शी हैज़ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, एंड किड्स सेक्शन भी होता है उनके शो में हर बार. तो सुनते रहिए उनको और सुनते रहिए फनीशा, बिकॉज हमारे आरजे आपको एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कुछ नया और खूबसूरत लाने की कोशिश करते हैं. So here's another beautiful track for all my listeners. Not this one, I'm so sorry. बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा गाना है आप लोगों के लिए.

So here was this beautiful track from the movie इश्क विश्क रिबाउंड. यार कितने भी रिबाउंड कर लो, कितने भी जंप्स कर लो, कितने भी पार्ट टू बना लो, नंबर टू बना लो, थ्री बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ये जो मूवीज जो हमारी पहले वाली थी ना, वही अच्छी थी. इश्क विश्क का जो फील था अमृता राव और शाहिद कपूर को देख के, वो फील और किसी रिबाउंड में नहीं आने वाला है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल एग्री विद दिस. बट इस टॉपिक पे चर्चा कभी और करेंगे, बिकॉज वीकेंड है, छुट्टी हो गई है, घर जाने का समय हो रहा है. मुझे भी मन कर रहा है बस मैं गाड़ी में बैठूं और निकल लूं अपने घर की तरफ. सो आज के लिए आप लोगों को करूंगी टाटा बाय बाय, और आपसे मिलेंगे मंडे ठीक 12:30 बजे. आपके होस्ट आयुषी लेकर के आएगी कुछ मज़ेदार गाने, आपकी फरमाइश, अपने पसंद के, सब कुछ मिला जुला के शो करते हैं हम. तो प्लीज़ सुनते रहिएगा. और अगले मंडे क्या लाऊं, आज जाके आज ही सोचना पड़ेगा इसके ऊपर. तो उस पर भी विचार करेंगे आप लोगों के लिए. अगले हफ्ते कुछ एंटरटेनिंग लेके आएंगे. फिलहाल आज के लिए विदा दीजिए. टाटा बाय बाय, सी यू ऑन मंडे. टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, एंड मेरे बाद किरण जी आपको करेंगी एंटरटेन बहुत सारे अच्छे अच्छे गानों के साथ. फिलहाल आपको छोड़े जा रही हूँ रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा के बहुत ही मज़ेदार नंबर के साथ. उनके साथ लगाइए दम, और फ्राइडे नाइट का वाइब मेंटेन रखते हुए ये गाना आप लोगों के लिए. टाटा बाय बाय, सी यू. योर होस्ट साइनिंग ऑफ, आयुषी भूषण. बाय बाय, एके बिहारी मॉम आपसे विदा ले रही है आज के लिए. टाटा बाय बाय.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
7: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
8: लैपटॉप में।
7: इन्वेस्टमेंट?
8: गूगल ड्राइव।
7: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
8: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
7: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
3: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। NRI वेल्थ, डोंट लीव अ मेस, लीव अ प्लान।
10: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।

0: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, sizzling flavors और चटपटे appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m. Order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
3: बिंदास बोलो, बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
1: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार, सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funasia Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. और जी 2:30 बजे से 5 बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे मैं रहती हूं आपके साथ विद सम ब्यूटीफुल म्यूजिक एज वेल एज बहुत सारा फन, कमाल, धमाल, मस्ती, एंटरटेनमेंट एज वेल एज इन्फॉर्मेशन सब कुछ लेकर आते हैं आपके लिए. 9722355555 ये है जी हमारे स्टूडियो का नंबर. आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ एनी टाइम यू वॉन्ट. वंस अगेन दैट नंबर इज 9722355555. आज है जी फ्राइडे. वी स्टार्ट विद मिक्स पॉट, देन वी गो टू किड्स जंक्शन जहां बच्चा पार्टी. रेडी हो जाइए, आपकी फोन कॉल्स 3 बजे के बाद लाइव लूंगी एंड यू विल बी एबल टू रिक्वेस्ट योर सॉन्ग्स. ऑल आई रिक्वेस्ट इज रिक्वेस्ट अ बॉलीवुड और अ हिंदी सॉन्ग एंड मेक श्योर यू आर ऑफ स्पीकर व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी ताकि मैं आपको क्लियरली सुन सकूं. बट दैट विल बी फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स एंड देन वी विल हैव चिल्लर पार्टी वेयर समवन फ्रॉम यू विल बी in the studio and co-host with me and we will have an absolute blast. So you can be a part of that too. You know, all you have to do is go to our social media pages, write your name, your age and your grade and someone from our team will get back to you. But right now, let's move to Mixpot. Ek purana gana aur usse kya khayal aaya naye gaane ka? That is the theme of Mixpot. Wo kehti hai na, bahut sare naye aur purane gaano ka guldasta.

जी हाँ, सुन रहे थे आप कर्ज फिल्म से ये गाना। और बहरहाल कर्ज फिल्म जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को कर्ज फिल्म पसंद है, क्योंकि कर्ज फिल्म का रीमेक जो बना वो तो खैर इस बात की सबूत देता है कि कर्ज बहुत मशहूर फिल्म थी। बट द वे ऋषि कपूर हैंडल्ड दैट इंटायर थिंग कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि री इनकारनेशन। इनिशियली वो राज किरण थे, फिर वो ऋषि कपूर बन के पैदा हुए, और सिमी गरेवाल ने जिस किस्म की उसके अंदर काइंड ऑफ एक विलनिश लेडी का किरदार अदा किया, एंड टीना मुनीम, एवरी थिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल सही पीसेस जो हैं वो पजल में बिल्कुल सही जगह पे लगे हुए हैं। इट वॉज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी। वैसे मुझे पता नहीं कि उस मूवी का रीमेक क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी उस रीमेक को बनाने की, बिकॉज आई स्टिल एम इन ऑ विद द ओरिजिनल कर्ज। अच्छा जी, ये तो हुई कर्ज मूवी की बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस एक हसीना थी से मुझे फौरन याद आया गोविंदा और करिश्मा कपूर का गाना हसीना मान जाएगी, सो उसको प्ले करती हूँ आपके लिए। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये जरूर बताना है कि जी, फाइनेंसिस का अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सो लेड बाय सीपीए सुधीर पाए, माई टाइम एक्विटी ऑफर करता है पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, साथ ही साथ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, या फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहते हो, किसी भी किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट है, माई टाइम एक्विटी विल लिसन टू यू एंड गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। हाउ अबाउट यू गिव देम अ कॉल, देयर इज नो हार्म इन गिविंग देम अ कॉल। 469-702-1272 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज mytimeequity.com। सो दिस इज हसीना फ्रॉम द लेटेस्ट वर्जन।

जी हाँ, हसीना मान जाएगी. एक हसीना थी एक दीवाना थी था से मुझे ये गाना डेफिनेटली याद आया. मिक्स पॉट में कुछ ऐसे ही पुराने और नए गानों का जो कॉम्बिनेशन है या इम्तिजाज है वो मैं आपको सुनाती हूँ. और आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट है, तो आप ऐसी सिचुएशन में आपको एक अटर्नी की ज़रूरत है जो आपकी तरफ से पेपर वर्क हैंडल करे, लीगैलिटीज इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करे, वाइल यू टेक केयर ऑफ योर well-being. And that attorney is attorney Umar Khwaja. Attorney Umar Khwaja aur unki team na sirf aapka case fight karti hai, they get you the best compensation that you deserve. Aur behtareen baat ye hai ki aapko kuch bhi nahi karna jab tak ki aap is case ko jeet nahi jate. So is win-win situation ko aap avail kijiye, khas taur pe is stressful time mein agar aap ya koi aapka pyara isse guzar raha hai. Take this Umar Khwaja's office's number, give them a call. 469-300-5046 469-300-5046 या फिर आप विजिट कर सकते हैं attorneyumar.com OMAR attorneyumar.com. अच्छा, ये तो हुई आपके लिए ये बात. अब मैं आपके लिए जो गाना प्ले करने वाली हूँ, ये एक ऐसी खूबसूरत पुरानी फिल्म से लिया गया है, 1974 की ये मूवी है जी. और इसमें हमें राजेश खन्ना नजर आए. बाकी मैं कास्ट आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिल्म का नाम आप मुझे बताएंगे और जीत लेंगे ये गिव अवे जो कि आपके लिए. अच्छा चलिए, पहले हम ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं गिव अवे की तरफ आपके लेके जाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप इस गाने की ब्यूटी को महसूस कीजिए. दिस इज करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम.

अच्छा, ये बात जो है आप लोगों को 100 नहीं 100 में से 200 मार्क्स फॉर कॉलिंग एंड गिविंग मी द नेम ऑफ दिस मूवी. अभी तो मैंने आपको बताया भी नहीं था कि आप क्या जीतेंगे और क्या गिव अवे है. ये सिर्फ सवाल थ्रो किया था एंड दैट इज द काइंड ऑफ यू नो पार्टिसिपेशन दैट आई रियली रियली अप्रिशिएट फ्रॉम यू. दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी फोन कॉल्स का. ये गाना आप सुन रहे थे, मैंने आपसे पूछा था कि इस मूवी का नाम बता दीजिए और आपने मुझे बिल्कुल सही नाम बताया. ऑफकोर्स गाने के अंदर ही इसका नाम छुपा हुआ था, आपकी कसम. आपकी कसम फिल्म से लिया गया ये गाना. थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी आपकी कसम के बारे में, क्या चीज बिल्कुल फॉरगेटेबल नहीं है इस मूवी की. लेकिन अब बताती चलूं आपको कि गिव अवे क्या था आपके लिए. गिव अवे था जी बरिस्ता. जी हाँ, फ्रिस्को के लिए ये खास खबर आई थी कि बरिस्ता हाउस जो कि डेंटन में बहुत मशहूर है वो अब फ्रिस्को में आ चुका है. ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. यहां मिलता है आपको हैदराबादी बिरयानी, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलिशियस डिजर्ट्स और भी बहुत कुछ. तो आपको सबसे पहले बताऊं उनका एड्रेस क्या है. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को एट 6377 कस्टर रोड. जरूर जाइए आप यहां पे बरिस्ता हाउस पे खाना खाइए. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एंजॉय इट. और मैं आपके लिए लेकर आई थी $20 का गिफ्ट कूपन ऑन योर डाइन इन ओनली. तो अगर आप जीतेंगे तो आप वहां जाइएगा, आप जब वहां खाना खाएंगे तो आपको उस पे से $20 का गिफ्ट कूपन मिलेगा, यानी कि ऑफ मिल जाएगा. और आप सबकी वंस अगेन फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और जैसे मैं कहती हूं एक लकी विनर आप ही की लक डिसाइड करती है, बिकॉज आपके सीक्वेंस को जिस नंबर में आप कॉल करते हैं वो मैं मैथ के फॉर्मूले में डालती हूं. और हमारी जो विनर हैं आज की वो हैं कॉलर नंबर 2, दैट इज अनीक. अनीक हुसैन साहब, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर बरिस्ता हाउस पहुंचाने के लिए एंड देन यू विल हैव 7 डेज टू अवेल दिस गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मैं इस तरह का एक और गिव अवे है मेरे पास आपके लिए, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल के प्रेजेंट करूंगी. हो सकता है बच्चा पार्टी के शो में प्रेजेंट किया जाए. सो वंस अगेन दिस इज आपकी कसम. और आपकी कसम के इस गाने से मुझे लेटेस्ट आजकल के जमाने का गाना जो याद आया वो है जी अय्या कसम से तेरी आंखें.

0: This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, and business advisory services for individuals as well as business owners. So, they are one of the fastest growing tax and accounting firms in the U.S. Do give them a call if you have any questions or concerns. There's no harm in calling 469-942-9888. 469-942-9888 is the number. Ya phir agfintechs.com is where you need to log on.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: जिंदगी एक रंगमंच है
3: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।

0: every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
1: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

0: होता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम.
1: कितने आदमी थे?
2: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: जिंदगी एक रंगमंच है
15: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फनेशिया।
7: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins. Home.

Hey, you.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday, दोस्तों. 104.9 FM Funny Girl Radio सुन रहे हैं. मैं आपकी होस्ट नवनीता. और ये जो अभी अभी किरण यहाँ से गई हैं, बहुत ही खास शो करके ऑन दिस फ्राइडे आफ्टरनून. एंड थैंक गॉड फॉर हर टू बी हियर. 3 से 5 का साथ उनके साथ, अब 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट मेरा शो. थैंक यू बने रहने के लिए मेरे साथ, जुड़ने के लिए मेरे साथ. अभी अभी ट्यून इन किए हैं तो वाओ, वेलकम टू माय शो. और ये है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. यू नो, मेक इट अ हैबिट गाइज टू रिस्पेक्ट पीपल विदाउट नोइंग द क्वालिफिकेशन, टाइटल और पोजिशन. अगर ये करने लग जाए ना तो फिर देखिए ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसेगी. बिकॉज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, इफ यू गिव दैट इज व्हाट यू गेट. कुछ नया हो जाए ये ब्रांड न्यू गाने के साथ शुरुआत करते हैं अपना शो. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे.

बाबरी, यू नो, वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग. और ये गाया आपको आवाज शायद पता चल रहा हो कि किसने गाया है. इट इज नन अदर देन सोना महापात्र. एंड सोना महापात्र एंड राम संपत हैव वर्क टुगेदर विद सो मेनी सॉन्ग्स, एंड ये उन्हीं की पेशकश है. बट दिस वन इज प्रोड्यूस्ड बाय आलिया भट्ट एंड शाहीन भट्ट, आलिया भट्ट की सिस्टर. एंड यू नो, ये वीडियो में या ये म्यूजिक वीडियो में आपको नजर आ रही हैं आलिया भट्ट. सुपर डुपर क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी आलिया भट्ट है. सो यस, इन प्रोडक्शन आलिया भट्ट हैज गॉट इनटू म्यूजिक. और यहाँ पर ये खूबसूरत सा गाना विच हैज़ बीन मेड बाय राम संपत एंड वॉइस हैज़ बीन गिवन बाय सोना महापात्र. अरे बावरी, वेरी क्यूट. यू हैव टू वॉच दिस टू हैव इट इनटू योर सिस्टम. होता ना जब आप एक बार पहली बार गाना सुनते हैं, नया गाना है, बट वॉट and now what, but when you keep enjoying that beat and it gets into your system, that's when it catches up. So usi ko kehte hain top 10 songs of the week, when it starts becoming top 10 songs of the week. Welcome, swagat hai aap sabka. jinhone abhi bhi tune in kiya hai, kuch naya ho jaye mein kuch naye brand new gaane jo aaj kal mein hi drop hue hain wo main baja rahi hu. jaise ki maine abhi drop kar diya hai weekend ka vibe, weekend a little early. hamesha friday sham ko hi mere sath ड्रॉप इन हो जाता है वीकेंड का वाइब. सो वाइब इट, वाइब ऑन, कीप वाइबिंग.

ब्यूटीफुल हरा हरा इश्क का गुलाब, आवाज पहचान रहे हैं थोड़ा सा भी? यस, इट इज बी प्राक, जो इतने अमेजिंग अमेजिंग उन्होंने गाने गाए हैं. और बी प्राक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिंगिंग. सुकृति अभी इसमें वॉइस दे रही हैं, द फीमेल वॉइस सुकृति कक्कर उनका नाम है. म्यूजिक कंपोजर इज दी रिश एंड द सॉन्ग इज इश्क का गुलाम. ब्रांड न्यू सॉन्ग है, इट हैज जस्ट ड्रॉप्ड इन टुडे. सो देयर यू गो, 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप मेरे साथ. मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता. वैसे यू नो यू मस्ट बी लिसनिंग टू दिस एड ऑफ माइंड विद आई एम अ रियल्टर विद केलर विलियम्स, दैट इज नवनीता. और वाओ मैन, दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी जिसको मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ सलाइना में है, बहुत ही खूबसूरत. द पर्सन जिनका प्रॉपर्टी है ही इज़ मूविंग आउट, दैट्स वाई इट्स इन अ थ्रो अवे प्राइस. इवन द ब्रांड न्यू बिल्डर्स जो आपको दे रहे हैं वहीं पर, उससे बहुत कम है प्रॉपर्टी प्राइसिंग विद ऑल द हाई एंड अपग्रेड्स. उसके साथ यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री बीज, all the electricals, appliances and all of that, high-end appliances, even the furniture, which are very, very beautiful furniture. I had the opportunity to stage this entire home and get it photographed. So photographs are available online. You can have a look at it. If you are ready to move in and you just want to enjoy a great community in Salina, उसके साथ an upgraded home, जिसमें सब कुछ हो, this is the place to be in. I am telling you, I'm here, not going anywhere, but you will get the best price and the best to live in for life. And you will thank me. Seller ko to haan, unhi ka hai, but you will thank me for promoting this property and wanting you to take that. Agar aapko chahiye ye, iske baare mein aur kuch jankari chahiye, whatever you have, clarity chahiye, 347-449-4242 is the number where you can reach me. कुछ नया हो जाए में ब्रांड न्यू गाने बज रहे हैं, तो ये एक और गाना, लाडो इसका नाम है, इमरान हाशमी आवर अपन टू से, दिशा पटानी इन दिस मूवी, जीत गांगुली, जुबिन नौथियाल.

0: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: इट्स द टाइम टू क्लॉक आउट।
3: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
4: अरे यार, घर मिल गया।
5: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
5: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
1: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner.
8: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
13: Welcome back, 104.9 FM, Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप, और मैं आपकी होस्ट नवनीता। ये बात से हाथ, straight from the heart, you are listening to this show. Thank God it's Friday with me here. You know. ढेरू राम ने कहा कि मैंने खाली अपनी बीवी से ये पूछा कि यू नो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो मेरी बीवी ने मुझे सीधा सीधा जवाब दिया कि क्या आपको लगता है मैं कभी भी वो स्टेप स्किप करूँगी? डू यू स्टैंड करेक्टेड मिस्टर ढेरू राम? वेलकम बैक दोस्तों।

0: आदमी निशानी हो जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका खराब टाइम शुरू।
1: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: बदला जितना पुराना होता है उतना ही बेरहम होता है।

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
1: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
4: लैपटॉप में।
3: इन्वेस्टमेंट?
4: गूगल ड्राइव।
3: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
4: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
3: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
5: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
6: जीनी, हुकम मेरे आका।
7: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
7: और एंटरटेनमेंट?
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
8: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इस powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
10: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

डिफरेंट, हाँ एब्सोल्यूटली डिफरेंट, बिकॉज फ्राइडे है, नई फिल्में के बारे में बात करना बिल्कुल बनता है. करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन, दे कम इन फॉर दिस दिस वीक. करीना कपूर खान इज बैक इन अ वेरी डिफरेंट अवतार. नो पू नो गीत स्टाइल मस्ती. दिस टाइम शी स्टेप्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ मेघना गुलजार विद दायरा, जो आज ही रिलीज हुई है आपके थिएटर्स में. शी इज नाउ एट दैट इंटरेस्टिंग स्टेज, पता है करीना कपूर, वे शी कैन मूव बिटवीन मेन स्ट्रीम ग्लैमर एंड सीरियस कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स. एंड ये जो दोनों जन हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन, दे आर इन दिस मेघना गुलजार दायरा विच हैज़ रिलीज टूडे, विच इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर विद करीना एंड पृथ्वीराज प्लेइंग पुलिस ऑफिसर्स हु फाइंड देमसेल्व्स ऑन अपोजिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल केस. क्या होगा, क्या होना है, वो तो देखने पर ही पता चलेगा ना. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट.

सो ब्यूटिफुल 104.9 FM फनीशा रेडियो सुन रहे हैं और ये नन अदर देन रणवीर सिंह. और पता है वैसे रणवीर सिंह प्रियंका चोपड़ा, हाउ कैन आई से दैट, बट रणवीर सिंह हमारी जो अमेजिंग पावर कपल है दीपिका पादुकोण के साथ, बोथ ऑफ देम विजिटेड द सिद्धि विनायक टेम्पल, बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँचे आज वो, एंड प्रिपेयरिंग फॉर येट अनदर चैप्टर फॉर देयर ब्यूटिफुल फैमिली. दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड एंड सिद्धि विनायक टेम्पल गणेशा फुल वीक और मोर देन अ वीक ऑफ गणेश सेलिब्रेशन. परफेक्ट परफेक्ट टाइमिंग. वैसे बॉलीवुड और गणेश जी का ये पूरा का पूरा हफ्ता ही है, बहुत कुछ हो रहा है अराउंड गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस. सलमान खान, कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर आल्सो अमंग द स्टार्स अटेंडिंग द अंबानी फैमिलीज गणेश फेस्टिवल एट अंतीला. और शाहरुख खान भी वहाँ थे बट पपराजी से थोड़े बचते बचाते अंदर चले गए, सो दोज पिक्चर्स वेंट आउट. बट कोई अंदर इनसाइड पिक्चर वॉज आउट वेयर इट शो दैट ही वॉज ऑल्सो इन देयर. And as I said, Ranveer Singh and Deepika Padukone, they also visited Lal Bocha Raja today. And that's very, very auspicious for Ganpati. Sun rahe aap 104.9 FM Phanesia Radio mere saath. And a very, very happy Ganpati festival to all of you. Celebrating Ganpati.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
8: अरे सारे तो सेम है।
7: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
8: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Aaj se aaj, straight from the heart. Kal Hindi Hindi bol.
14: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navnita Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
15: Call Navnita Khemka at 347-449-4242.
16: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242.
17: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। फिएस्टा वेजी, पोयो लोको, सनो कैमरॉन, डिफरेंट नेम्स, क्रेजी फ्लेवर्स। वंस यू ट्राई दीज, योर ओल्ड ऑर्डर माइट जस्ट गेट घोस्टेड। फन पिज्जा किचन, न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Yaar, festival season aa raha hai. और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
22: कितनी लंबी लिस्ट है?
21: बस दो पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
22: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
23: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFL Worldwide.com.
24: साथिया।
21: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
0: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
1: तुमसे मिलके दिल का है।
0: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

वेलकम बैक दोस्तों, 104.9 FM फन नेचर रेडियो पर आप सबका स्वागत है। ये जो बहुत ही खास दिन है, अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग गणेश पूजा। हमारे फन एशिया ने भी बहुत ही खूबसूरत से वी गॉट गणेश आइडल एंड देयर वाज दिस पूजा एंड आरती एंड वाओ मैन, जस्ट फील्स सो गुड, सो ऑस्पिशियस। एंड आई होप ऑल ऑफ यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ। हर जगह से कोई ना कोई ब्लेस करने तभी आते हैं जब आप ओपन हो, रिसेप्टिव हो उस विशेस के लिए, उस ब्लेसिंग्स के लिए। हम इतना अपना दिमाग लगा देते हैं ना, हमेशा सोचते हैं जो होता है हम हैं, वी आर इन कंट्रोल एंड वील डू व्हाट वी वांट टू, श्योर। बट फिर भी वो ब्लेसिंग्स जो हमें विदाउट कंट्रोलिंग मिल जाती है ना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, बिकॉज वही लेकर आती है भरपूर आशीर्वाद और ग्रोथ, और वही हो आप सबके लिए। 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर आप सबका स्वागत है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

ब्यूटीफुल 104.9 एफएम फनी जो रेडियो सुन रहे हैं मेरे साथ, हमें आपकी होस्ट नवनीता पांच से आज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये शो मेरा। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और रियली फीलिंग दैट इट इज थैंक गॉड फ्राइडे आ चुका है, अर्ली ड्रॉप इन ऑफ द वीकेंड। फ्राइडे शाम से ही ऐसा एहसास तो होने लगता है यार फ्राइडे आ गया, गहरी वाली सांस। वैसे बताए दिन में 3 बार सोच के आपको एक गहरी वाली सांस ले लेनी चाहिए। हम ऐसे इनवॉलेंटरी सांस और बहुत शैलो सांस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। कहा जा रहा है सब स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि आप अगर रुक कर एक पूरे पेट से भरकर हार्ट से लेते हुए गले तक जोर से इन एंड देन फुल आउट सांस 3 बार दिन में ले लेना, जिंदगी को ऐसे पलटते देखिए। वैसे एक कहानी बतानी थी, एक स्टोरी बतानी थी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना था। 6 new faces आर बीइंग लॉन्च्ड इन बॉलीवुड। लव रंजन रिवील किए हैं कि नए 6 newcomers फॉर हिज अपकमिंग फिल्म पहला प्यार दूसरी बार में, यू नो दे ही इज गोइंग टू हैव दीज फेसेस। पहला प्यार दूसरी बार, इनके ऐसे नाम होते हैं, सोनू की, टूटू की, ट्वीटी, सोनू के, टीटू की, स्वीटी, प्यार का पंचनामा, तू झूठी मैं मक्कार, यू नो लव रंजन। और इन्होंने बहुत सारे न्यू फेसेस दिए, सबसे पहले तो आप कार्तिक आर्यन ही ले लें, पर पहला प्यार दूसरी बार कैसे हो सकता है यार? पहला प्यार पहली बार हो सकता है, दूसरी बार रियली? पर ये यार वाला गाना सुन रहे हैं।

सो ये भी लव रंजन की ही फिल्म थी। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनो के टीटू की स्वीटी। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 न्यू कमर्स आर बीइंग लॉन्च बाय लव रंजन और ये फिल्म अक्टूबर 23 को रिलीज होगी। पहला प्यार दूसरी बार, यार पहला प्यार दूसरी बार कैसे हो सकता है? मैं सोच रही थी इस ब्रेक में कि हो सकता है यार पहला प्यार हुआ देन ब्रेकअप हो गया एंड देन उसी पहले प्यार से फिर दूसरी बार वापस से प्यार हो गया, ऐसा ही कुछ होगा 100% लिख लो। बट व्हाटएवर, हमारा बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, बस बताने की ज़रूरत है। यू आर दे आर सो क्रिएटिव, समथिंग और दी अदर विल हैपन। वैसे पहले प्यार में अगर लव एरिया हुआ और दूसरा वापस से पहला प्यार हो गया तो टाइफॉइड या निमोनिया होने के चांसेस है, और अगर टाइफॉइड या निमोनिया हो गया और आपके पास कहीं जाना है, 13 ईयर्स से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक है। मैंने क्या ट्विस्ट मारा है ना, यही है कि टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक कुछ भी हो आपको, दे कैन हेल्प यू एंड दे प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी। और अब वो ग्रो हो रहे हैं ब्रांड न्यू नेम के साथ, सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन लेकर आ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल। सो वही टेक्सस प्राइमरी केयर अब जाना जा रहा है लिनॉक्सी मेडिकल के नाम से, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोसिस एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, और हर कुछ एक ही छत के नीचे, लाइक ऑल अंडर वन रूफ। यस, दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM, 8 से 8 तक। मैं हूँ 5 से 8 तक, ये 8 से 8 तक। वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड। नाम याद रखिए, टेक्सस प्राइमरी केयर उर्फ लिनॉक्सी मेडिकल, 104.9 FM, फन एशिया रेडियो। सुनते रहिए मुझे 5 से 8।

ब्यूटीफुल डिफरेंट नाइस 104.9 FM पनीजा रेडियो सुन रहे हैं. ये जो गाना है ना एक्चुअली रीमेक है कौन दिशा, तो हमने बहुत ही सुना है नदिया के पार कौन दिशा में. 1982 की फिल्म थी, लेकिन ये ब्रांड न्यू सिंगर हमाया ता एंड जसपाल सिंह ये गाना इन्होंने रीफॉर्म किया 2023 में आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स. सो देयर यू गो 104.9 FM फनीजा रेडियो. अगर आप सुन रहे हैं, वैसे कल क्या कर रहे हैं आप, हाँ बताऊँ, जैसे ये प्ले किया मैंने वैसे ही प्लेट फुल नाम सुना है अभी तक फनीजा पर, हाँ आपने सुना होगा, ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल ही है ये इवेंट, तो इसलिए मैंने पूछा आप कल क्या कर रहे हैं. अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो डैलस प्रोफेशनल्स आपके लिए है. अगर आप फील कर रहे हैं स्टक या फिर वंडर कर रहे हैं इफ़ AI एंड वर्क प्लेस चेंजेस आर लीविंग यू बिहाइंड, बहुत लोग इस अचरज में पड़े हैं कि क्या होगा उनके जॉब का. सो फोर टाइम TEDx स्पीकर है, एन अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलक्षेत्रा फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. ये होने वाला है कल. लर्न हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू स्ट्रेंथ योर लीडरशिप प्रेजेंस एंड एक्सेलरेट योर करियर विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. करना क्या है, कुछ नहीं, रजिस्टर कीजिए आज ही एट playitfull.com/Dallas एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. इट्स हैपनिंग इन डैलस, यहीं पर, और कल September 19. तो जल्दी से चले जाइए प्ले इट फुल, जैसे अभी भी गाना बजाया मैंने, playitfull.com/Dallas. नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट येस यू कैन प्ले इट फुल. वैसे विवान फिल्म रिलीज हो रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगी इस गाने के बाद. चलिए लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
4: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, just 3 doors down, with limited reservation available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
1: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
7: Call now 945-527-08 897 or visit astrologerishwar.com.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
12: वेलकम दोस्तों, 104.9 FM फनीजा रेडियो पर स्वागत है. पता है आप जो गाना सुन रहे थे, ये फिल्म विवान से लिया गया है. थोड़ा सा वो गाना खत्म होता है उसके बारे में बताती हूँ. ओके okay?

सो ऐसा है कि विवान का ट्रेलर हैज ड्रॉप दिस वीक. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना नजर आ रहे हैं और ये गाने में भी बहुत हैपनिंग गाना है, विल कैच अप. एंड दिस मूवी इज लीनिंग टूवर्ड्स इंडियन फोकलोर, सुपर नेचुरल एलिमेंट एंड एडवेंचर. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना ने भी ये यूनिवर्स में कदम रख दिया है, विच इज सुपर नेचुरल. So there you go, 104.9 FM, Fun Asia Radio पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत. दोस्तों वैसे पता है मैंने कहा था ना, लव रंजन हैज़ कम अप एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट 8 न्यू फेसेस दैट ही इज़ लॉन्चिंग. और मैंने कहा था उनकी फिल्म का नाम भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है, विच इज़ पहला प्यार दूसरी बार. सो मेरे एक लिसनर ने कहा कि पहला प्यार दूसरी बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहला प्यार किया हो, वो पहला प्यार हो आपका, बट उस समय शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके पहला प्यार है और मूव ऑन हो गए कि लेट अस जस्ट गो आवर वेज. बट बाद में समझ आता है यार, वो जो लड़की थी या लड़का था वो ही तो मेरा पहला प्यार था. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज आई कांट लेट दैट पहला प्यार गो एंड लेट मी गेट इन टू दूसरी बार वाला लव स्टोरी. आपको क्या लग रहा है, ये लव रंजन के जो हमें बहुत सारी मूवीज़ उनकी होती हैं, द वे हिज मूवी मेकिंग इज़, क्या होगा पहला प्यार दूसरी बार का स्टोरी लाइन? आपको कुछ लग रहा है तो फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 9722355555, यही लिख डालते हैं उनकी इस नई वाली स्क्रिप्ट जो रिलीज़ तो होगी लेटर, बट हम अभी बता देंगे कि हमारे दिल में क्या है व्हेन वी हियर अबाउट पहला प्यार दूसरी बार. एंड ये जो मेरे लिसनर हैं निलेश साहब, उनकी पसंद ये गाना.

0: सुपर 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं। मैं आपकी होस्ट नवनीता। ये जो मैंने कहानी का सिलसिला चालू किया है, सुपर डुपर सो मच फन, माय लिसनर इज हियर, कि पहला प्यार दूसरी बार, लव रंजन की ये नेक्स्ट मूवी जो अक्टूबर 23 को रिलीज होगी, उसकी कहानी क्या हो सकती है। लेती हूँ मैं अपने नेक्स्ट कॉलर को ऑन एयर। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर। बताइए आपके लिए ये क्या कहानी, आपके दृश्य में क्या आ रहा है?
1: हाय नमिता। यस भाई, मेरे लिए ऐसा है कि ऐसा जब पहली बार प्यार हुआ छोरी नाल, तो छोरी का बाप उन्हें पकड़ लिया।
0: हाँ।
1: उसने सारे ऐसे छित्तर मारे।
0: हाँ।
1: सारा प्यार का नशा उतर गया।
0: हाँ।
1: अब जो नशा उतर गया तो पहला प्यार गया।
0: हाँ।
1: उसके बाद फिर आता है नंबर टू, उसकी पड़ोसन से देखा तो फिर से प्यार हो गया।
0: तो ये तो दूसरी लड़की से हुआ ना पहला प्यार, दूसरी बार हुआ ना?
1: तो वही हुआ ना, पहली बार का प्यार में उसके बापू ने मार के प्यार निकाल दिया। दूसरी बार आया फिर तो उसके फिर से प्यार हो गया।
0: अच्छा, ये
1: अब हो गया तो उसको कहते हैं पहला प्यार, दूसरी बार ये हो गया आपका।
0: ओके, आपका निकल चुका था, फिर से वापस से पहला प्यार हो गया। माय गॉड, ये नवरंजन को भेजना पड़ेगा।
1: पहला प्यार दूसरी बार ना, तो पहला प्यार तो पहली बार हुआ।
0: हाँ।
1: दूसरी बार वही पहला प्यार ही हुआ, फिर दूसरी बार
0: राइट।
1: वो कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए
0: कहाँ
1: तो फिर
0: कहाँ।
1: पहला प्यार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका फिर दूसरी बार कैसे होगा?
0: ओह माय
1: गॉड, वो तो अधूरा रहना ही था ना, तुम्हारी अधूरी
0: कहानी। यस, सुपर, कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ता है। सुपर, थैंक यू सो मच। पहला प्यार दूसरी बार, आपको कितनी बार हुआ वैसे प्यार?
1: वो हर तीसरे चौथे दिन हो जाता था। फिर
0: अभी तो अभी एक जगह अटक गया है।
1: अब अटक गया तो अटक गया, अब क्या करें।
0: ओके, इतने दुख से नहीं बोलिए, बट ओके नाइस।
1: पहले
0: बहुत
1: कोई
0: होता
1: सुन नहीं
0: था।
1: रहा तो ठीक है, ठीक है, जब हो गया तो हर दूसरे दिन बाय गॉड आज तो लव हो गया।
0: सुबह आज का लव कंप्लीट, लव का कोटा, इनका नाम ही लव रंजन है, इसलिए ऐसी लव लव मूवीज बनाते हैं।
1: हाँ, वही है ना, नाम ही ऐसा है तो क्या करें, वो भी हमारा ही जैसा कोई होगा।
0: आप जैसा ही कोई होगा। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, बाय बाय।
1: थैंक यू, श्योर श्योर, थैंक।
0: पहला प्यार दूसरी बार।

Oh my God, cutie pie! This one from the film *Ae Dil Hai Mushkil*. बहुत ही cool song था अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर in this cutie pie song. 104.9 FM, Fanija. रेडियो सुन रहे हैं. वैसे जरूर ने हमने कहा, मुझे कोई दोस्त ने कहा, तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? अरे मैंने कहा, एक बार जिसका चुनाव किया था उसी से ही लड़ते लड़ते मुझे फुर्सत ही नहीं मिली नेक्स्ट चुनाव लड़ने की. चलो राम, क्यों लड़ रहे हो आप? यू हैव टू चुनाव लड़ो यार, ये क्या घर में लड़ाई कर रहे हो? चुनाव लड़ो, यू कैन चेंज द रुख, बदलो एटीट्यूड. 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. पता है आपको, सोनू निगम आ रहे हैं. ओ माय गॉड, दिस आई कांट इवन टॉक मोर अबाउट अ कॉन्सर्ट विच सोनू निगम डज. मैं ऑलरेडी 3 कॉन्सर्ट्स उनके जा चुकी हूँ एंड आई स्टिल फील आई हैव टू गो मोर एंड मोर टिल एज मेनी कॉन्सर्ट्स ही ब्रिंग्स टू द सिटी एज मेनी कॉन्सर्ट्स ही डज, यू नो, बिकॉज ही इज़ वन एंटरटेनर, फुल ऑन एंटरटेनर. वो यू नो डांस भी करते हैं, वो इंगेज भी करते हैं ऑडियंस को. गाते तो इतने सुरीले हैं कि वो एक सुर उनका इधर से उधर हिलता नहीं है. वो तो गायक हैं बट ही इज़ अ फुल पैकेज एंटरटेनर. और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो कॉमेडी कर लेते हैं, वो मिमिक्री कर लेते हैं ऑफ डिफरेंट सिंगर्स लाइक उदित नारायण, इवन अरिजीत सिंह एंड ऑफ कोर्स द ओल्ड सिंगर्स तो हैं ही हैं. मुकेश के तो फर्स्ट, मोहम्मद रफ़ी के तो गाना गा गा के वो उन्होंने सीखा ही था. बट दैट लाइव एंड कॉन्सर्ट इज़ कमिंग हियर हमारे ही शहर में. अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूज़िक होने वाला है. इसका नाम ही है सोनू निगम रेवोल्यूशन. एंड सैटरडे सेप्टेम्बर 26 8:30 PM को है. क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके, और सबसे अच्छी बात है इनके सॉन्ग्स भी इतने सारे इतने अच्छे, रोमांटिक, यू नो, सैड सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, फन सॉन्ग्स, एवरीथिंग. टिकट्स अवेलेबल ऑट टिकट मास्टर. और इन्फॉर्मेशन के लिए आप फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 855-360 शोज. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फनीजा नेटवर्क. और ये जो सोनू निगम का कॉन्सर्ट है, कंप्लीट पैसा वसूल. ट्रस्ट मी, दैट इज हाउ हिज कॉन्सर्ट्स आर. 104.9 FM फनीजा रेडियो सुन रहे हैं आप मेरे साथ. मैं आपकी होस्ट नवनीता. ये जो पीछे वाला गाना बज रहा है ना, मेरा म्यूजिक सोनू निगम की आवाज है विद श्रेया घोषाल. एक छोटे से ब्रेक में हम मूव ऑन हो जाएंगे. आप दुखी मत होइएगा, दिस विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक.